हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026 प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है।

0: कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो चुके हैं। समय है आज के विचार का। विषय है जीवन को पारदर्शी बनाएं। आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: जीवन होता ही पारदर्शी है, ईश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है। व्यर्थ के आडंबर और दिखावे में आकर यही जीवन हमारे लिए बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जो हमारे अपने ही जीवन का भार लिए हुए हमें जीवन से विमुख कर देता है। ऐसे जीने में कोई सार नहीं। शायद यही सार ग्रहण करने के लिए कबीर साहब फरमाते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही ले थोथा दही उड़ाए। जब तक हम ये थोथापन ढोते रहेंगे, जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। कबीर जी सार को ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। आखिर ये सार क्या है? क्या धन संपत्ति, सुख वैभव, आराम और धन इकट्ठा करना ही जीवन है? कतई नहीं। हालांकि इस शरीर की इंद्रियों को चलाने में मन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मन को साधना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सुख का साधन दुख की तरफ ले जाता है और हमें सांसारिक ऐश्वर्य की तरफ खींचता ही चला जाता है, जबकि इन चीज़ों में जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो परम सत्य, परम धर्म और परोपकार में है। शायद इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मन माधव नेकु निहारहीं, मन माधव नेकु निहारहीं, सुन सट सदा रंक के धन ज्यो, छिन छिन प्रभु ही संभारहीं, शोभा शील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारहीं, रंजन संत अखिल अध गंजन, भंजन विषय बिकार रही, जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चह भव पा रही, तो जनी तुलसीदास निस्बासर, हरिपद कमल बिसार रही। यह छंद गोस्वामी तुलसीदास जी रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। ये छंद हमें मन के माध्यम से कहता है कि हे मन, माधव की ओर तनिक तो देख। अरे दुष्ट सुन, जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभाला करता है, वैसे ही तू भी अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण किया कर। वे श्री राम शोभा शील ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर और बड़े दानी हैं, संतों को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले और विषयों के विकार मिटाने वाले हैं। यदि तू बिना ही योग यज्ञ व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी बिसारना मत, कभी भूलना मत। यहाँ पर तुलसीदास जी परमेश्वर से संबंध जोड़ने और संसार से संबंध काट लेने की बात कहते हैं। सद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि शरीर और संसार एक है तथा जीव और परमेश्वर एक है। शरीर और संसार का साथ छूटने वाला है, जबकि जीव और परमेश्वर का संबंध अटूट है। अगर इस दृष्टि से देखें तो हमें महसूस हो जाना चाहिए कि परम सत्य परमेश्वर के बिना इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए प्रयास करके हमें संसार से मुक्त होकर एक पारदर्शी जीवन जीना चाहिए। एक ऐसा जीवन जो कभी ना उजड़े, कभी ना खत्म हो, कभी ना दुखदायी हो। जब संसार छूट जाता है, फिर जीवन एक पारदर्शिता धारण कर लेता है, जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है।
1: जीवन को पारदर्शी

दृष्टि बनाएं। इस विषय पर था आज का विचार। आलेख और वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो चुके हैं। समय है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं हरिहरन के गाए इस शिव भजन के साथ।

ये प्रस्तुति थी अनुराधा पोडवाल और साथियों की, कार्यक्रम था वंदना। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में अगला शिव भजन।

के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। प्रातःकाल के 6:30 बज रहे हैं। समय है रामचरितमानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 96 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 97 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है अनुराधा पोडवाल का।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम खेती की बातें। समय रहेगा प्रातः 6:45। कार्यक्रम में बीकानेर क्षेत्र में अनार उत्पादन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7:00 कार्यक्रम सुप्रभात में विश्व फुटबॉल दिवस, रास बिहारी बोस जयंती और नैतिक मूल्यों के महत्व जैसे विषयों पर होंगी चर्चाएं। हमेशा की तरह हमारी पहली सभा में फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30। तत्पश्चात सुबह 10:00 से लेकर दिन में 12:00 तक, दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 भी आप सुन सकेंगे हमारी पहली सभा में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह 8:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में होगी वार्ता हिंदी साहित्य का बदलता स्वरूप विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री निर्मल रांकावत। सुबह 9:10 का समय रहेगा लोक संगीत का। सुबह 9:30 सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। दिन में 12:10 पर होगा नाटक मंथन, लेखक होंगे श्री मदन शर्मा। दोपहर 1:05 पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा रहेगी समय प्रबंधन और नियमित दिनचर्या, रास बिहारी बोस जयंती, बच्चों को आउटडोर गेम सिखाएं, जरथोस्त नो डिसो। साथ ही साथ कार्यक्रम में होगी वार्ता डिजिटल इंडिया और महिला उत्थान विषय पर। वार्ताकार होंगी श्रीमती इशाली हर्ष। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे। जी हां, हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह प्रथम में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा में आप फिल्मी गीतों का आनंद उठा सकेंगे शाम 6:05 पर। तत्पश्चात रात्रि 8:00, रात्रि 9:15 का समय भी है फिल्म संगीत का और रात्रि 9:30 आप पुराने गीतों से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गीतों का आनंद ले सकेंगे। शाम 7:00 होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चाएं रहेगी इस सप्ताह के कृषि कार्य, नौतपा में ध्यान रखने योग्य बातें, बालिका हित आधारित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, रक्तदान जीवनदान जैसे विषयों पर। सुगम संगीत हमारी दूसरी सभा में आज प्रसारित होगा। समय रहेगा रात्रि 7:45 का और रात्रि 7:30 कार्यक्रम सुगम संगीत में आप गजलों का आनंद ले सकेंगे। सुबह 9:10 के पश्चात लोक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण हमारी दूसरी सभा में रात्रि 8:30 किया जाएगा। रात्रि 10:00 आकाशवाणी जयपुर से रिले होगा खेल जगत। ये था हमारे आज प्रसारण।

0: होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो रहे हैं। समय है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें का। बीकानेर क्षेत्र में अनार उत्पादन विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत कुमार जाछड़ा।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करा बीकानेर क्षेत्र में अनार उत्पादन रे बारे में। बीकानेर रेगिस्तान रे में अनार री खेती से करोड़ों री कमाई हो रही है। अठे देशनोक पलाना मान्याणा देसलसर नापासर एचका गांव है। अठेरा किसान मूंगफली और बाजरे रे छोड़ और खेती रे दूसरा तरीका खनी भी रुझान करन लग गया है। इमु कई किसान जो है अनार री खेती रे उत्पादन खनी ध्यान दियो है। ई गांव रे मैंने औसत 12 बगीचा मैंने 1,00,000 तक पौधा मिलन लग गया है। बीकानेरी सिंदूरी अनारी अठे बम्पर पैदावार हो रही है। ई गांव रे मैंने कई बगीचा ऐसा है जठे एक अनार रो वजन जको है 300 से 400 ग्राम तक मिलन लागियो। बीकानेर में अब अनारी बम्पर फसल होन लग गई है। कई किसान जका पारंपरिक खेती करता है और एक बुआई सु 50,000 रुपया तक री कमाई करता है। वही किसान अब अनार बगीचा लगाने रे बाद मैंने करोड़ों रुपया तक कमाई करने लग गया है। बीकानेरी अनार रो जो को आकार है राजस्थान में सबसे बड़ो होइजन रो भी दाव करी जाए। ये मान्याणा गांव रा किसान जका है बठे भी अनारा बगीचा दिखे है। देशनोक पलाना देसलसर अठे भी दिखे है। चुरूर मैंने भी कई जगह दिखिया करे है। सीकर में नागौर में भी कई जगह अनारा पौधा दिखे है। ये पौधारी संख्या जका है समय रे साथ बढ़ रही है और किसान जका है बताया करे है कि अनार रो पौधो कम से कम 25 साल तक फल दिया करे है और 20 लंबे समय तक आय होती रहे। अनार पौधे री सुरक्षा रो जरूर ध्यान रखना पड़े। इमें बार बार कटाई छंटाई करनी पड़े पर बिरबाद रे मैंने कई साल तक इसू पैदावार ली जा सके। अबे बात करा कि बीकानेर रे मैंने अनार इतनी सफल क्यों है। इर कारण है अठेरो गर्म तापमान। बीकानेर लाडला दिनार मैंने सिंदूरी अनार रो गढ़ बनन लग गयो है। लाडला कई साल मैंने देख रहा कि जालोर सिरोही बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर वाली जगह अनार ही बाही अनार और बल्कि यहाँ कह सका बिसु चोखी अनार बीकानेर में लागण लागी। पहली बगत रे मैंने अनार महाराष्ट्र रा किसान उगाता या गुजरात रा किसान उगाता बा आपारे क्षेत्र में बिकने आउती। अभी बीकानेरी अनार जकी है राजस्थान में आपारे बिकन लागी। अनार रो रकबो जको है समय रे साथ बढ़ोतरी ले रियो है। बीकानेर चूरू नागौर सीकर एक क्षेत्र मैंने चौकी बढ़वार देखी जरी है। सूखे और कम उत्पादन री मार झेलन नाला धोरा जका है। अब अनार री खेती रे मामले में भी आपरी पहचान बनाऊ लग गया है और अठे किसान पारंपरिक जकी सरसों गेहूं बाजरा गवार मूंग मोट मूंगफली इं री खेती कर चोखो मुनाफो कमाता बठे अब अनार खनी मुड़ गया और अठे री उगौड़ी अनार जकी है दिल्ली नोएडा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और दूसरे जगह बिकन लगी है। राज्य सरकार और कृषि उद्यानिकी विभाग है बीरे प्रयासों साल 2015-16 में 4 हेक्टेयर क्षेत्र में जठे अनार री पैदावार शुरू हुई जी बठे अब 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र तक अनार पहुंच चुकी है। बालू मिट्टी और धोरहर महीने अनार जगह स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होने लगी है। कृषि विशेषज्ञ री माना तो अठेरो मौसम और वातावरण अनार री खेती रे एकदम अनुरूप है और अठे उत्पादित होने वाली जकी अनार है वे महाराष्ट्र में उगने वाली अनार से भी ज्यादा मीठी है। इसके अलावा बालू मिट्टी रे मायने कई खनिज हुए पोषक तत्व है पर्याप्त मात्रा में हुए बिलकरण अनार रा जका दाना है वे स्वास्थ्य वर्धक और पौष्टिकता से भरपूर होने लग गया। अठे उत्पादित अनार रो औसत वजन समय रे साथ बढ़ियो है गुणवत्ता बढ़ी है और किसान एक साल में अनार रा 2 से 3 उपज तक लेवन लग गया है और अनार पौधे रे लगाने रे 3 साल बाद ही उत्पादन चालू हो जावे जो को 25 साल तक मिलते रहे। सरकार जो को है 50% अनुदान भी देवे है। अनार खेती मत किसान ने 50% जो को अनुदान मिलिया करे है इरो किसान लाभ उठा रिया है। एक किसान ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर में अनाज री खेती कर ई अनुदान रो लाभ ले सके है। किसान ने ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया ये लागत रो 50% जो को कम हुए वो अनुदान मिल जावे पर इर वास्ते जरूरी है कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लागू हुए। बूंद बूंद सिंचाई मत है अलग सु 50% अनुदान मिल सके है और इर कारण ही किसान जो है अनार री खेती खनी रुझान बढ़े है। कई किसान इस जगह सिर्फ 1 हेक्टेयर में अनार की खेती करी और 800 पौधा विकसित करी और बाकी क्षेत्र में अपनी पारंपरिक खेती करी बिर बावजूद भी इतने सी क्षेत्र से 4-5 लाख रुपया आराम से कमाई कर रही है। इन तेरसों कह रही है कि बीकानेर में अनार उत्पादन

0: काफी फायदेमंद हुए है। इस कारण किसानों का रुझान बढ़ियो है और बीकानेरी अनार जकी है प्रदेश में अपनी पहचान बना रही है और सिंदूरी अनार रो बीकानेर गढ़ बन गयो है।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। बीकानेर क्षेत्र में अनार उत्पादन विषय पर जानकारी दी डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:50 हो रहे हैं। सुनिए गणेश नाथ से लोक भजन।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा।

पाँच मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 7 बज चुके हैं, समय है कार्यक्रम सुप्रभात का।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज दिनांक है 25 मई। खास है आज के पूरा विश्व मना रहा है विश्व फुटबॉल दिवस। जी हाँ श्रोताओं, खेल जो कि मूल्यों को बढ़ावा देते हैं और फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल होने के नाते शांति को बढ़ावा देने, सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखने की अपार क्षमता अपने में समेटे हुए है। 2024 में इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। ये टूर्नामेंट आज ही के दिन यानी 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए 7 मई 2024 को महासभा ने संकल्प पारित किया, जिसमें 25 मई को यानी आज के दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव में फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कबूल किया गया है और ये माना गया है कि फुटबॉल सहयोग के लिए एक स्थान बनाता है। जी हाँ श्रोताओं, खेलों ने हमेशा ही वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी इनका अहम योगदान रहा है। फुटबॉल एक प्रमुख वैश्विक खेल होने के नाते एक अद्वितीय स्थान हमेशा से ही रखता है। महज मनोरंजन से परे ये एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से बहुत परे है। ये साझा जुनून समुदाय और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को बढ़ावा देता है। फुटबॉल की व्यापक लोकप्रियता और सुलभता इसे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली साधन बना देती है श्रोताओं। साथ ही ये मैदान पर और मैदान के बाहर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा फुटबॉल समावेशी है, समाज के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, एकता को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच की बाधाओं को दूर करता है। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपसी समझ, सहिष्णुता, समानता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आपसे हमने कहा कि महासभा द्वारा पारित इस संकल्प में फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्यिक और शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्वीकार किया गया है और ये माना गया है कि फुटबॉल सहयोग के लिए एक स्थान प्रदान करता है। ये फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की मौलिक भूमिका और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फुटबॉल संघों के साथ साथ संबंधित संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देता है श्रोताओं। इस प्रस्ताव में सभी देशों को फुटबॉल और अन्य खेलों की शांति, विकास और महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उनका सशक्तिकरण शामिल है। साथ ही इसमें देशों को फुटबॉल और अन्य खेलों तथा शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रम अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया है। जी हाँ श्रोताओं, ये प्रस्ताव इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विश्व फुटबॉल दिवस मनाने और शैक्षिक और जन जागरूकता बढ़ाने वाली सभी गतिविधियों सहित सभी के लिए फुटबॉल के फायदों का प्रसार करने के लिए ये प्रस्ताव पूरे विश्व को आमंत्रित करता है। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल किस तरह से एनर्जी से भरपूर खेल है। इसमें ना सिर्फ शारीरिक बल्कि

मानसिक एकाग्रता की सख्त आवश्यकता होती है। फुटबॉल हमें ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि फुटबॉल मदद करता है ये समझने में कि पूरा विश्व दरअसल एक परिवार है। जी हाँ श्रोताओं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो हम में जीत की भावना को इतनी मजबूती से भरता है कि चाहे फिर जो भी हो जाए, चाहे हमें लगे कि ज़मीन थम गई है, आसमान रुक गया है, हम जिन ऊंचाइयों की चाह में हैं उन ऊंचाइयों तक हम पंख फैला के उड़ नहीं पा रहे, तो फिर फुटबॉल हम में फिर से नया जोश, नई हिम्मत भरता है और हमें हौसला देता है कि हम अपने पंख फैलाएं और बगैर परवाह करें कि चाहे आसमां हारे, चाहे ज़मीन रुक जाए, वक्त ठहर जाए, हम फिर से ऊंचाइयों की तलाश में और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ें। तो चलिए इस गीत को समर्पित करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, जहां एक तरफ पूरा विश्व आज विश्व फुटबॉल दिवस मना रहा है, वहां साथ ही साथ आज यानी 25 मई को हम भारतवासी राम बिहारी बोस जयंती का भी सम्मान करते हैं और इस दिन को बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के सुबलदे गांव में राम बिहारी बोस का जन्म हुआ। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई और आज़ाद हिंद फौज की शुरुआती संगठनकर्ताओं में से आपका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदननगर में हुई, जो उस समय फ्रांसीसी नियंत्रण में था। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कुछ समय तक देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भी काम किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे राज बिहारी बोस ने 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के ऐतिहासिक योजना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इसी तरह से 1915 के गदर विद्रोह में प्रमुख आयोजकों में से आप एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना विफल होने के बाद आप ब्रिटिश खुफिया विभाग को चकमा देकर जापान चले गए। जापान में रहकर आपने भारतीय प्रवासियों को एकजुट किया और 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। राज बिहारी बोस ने ही सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार रखा और उसकी नींव को मजबूत किया। आपने बाद में सेना की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी। सन 1923 में आपने जापान की नागरिकता ले ली और वहां रहकर भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को जुटाते रहे। भारतवर्ष की आज़ादी श्रोताओं अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। भारतीय आज़ादी का संघर्ष विश्व के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक है। ये आज़ादी हमें बड़ी तपस्याओं, बड़े प्रयास, बड़े बलिदानों के बाद हासिल हुई है और इस आज़ादी का मर्म यही है कि इस आज़ादी ने हमें ये सिखाया कि हमें जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बिताना चाहिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि वही जीवन दरअसल असली जीवन है जो दूसरों के काम आया। सभी महापुरुषों के जीवन से भी हमें यही शिक्षा मिलती है, यही जानने को मिलता है। सभी क्रांतिकारी, भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी नेताओं के जीवन से भी हम ये आसान सा संदेश हासिल कर सकते हैं कि दरअसल जीवन वही सफल है जो अपने लिए नहीं जिया गया बल्कि दूसरों के लिए जिया गया।

श्रोताओं, अपने लिए नहीं जीकर दूसरों के लिए जीने की शिक्षा या यूं कहें ये प्रेरणा हमें हमारे समाज से, हमारे माहौल से ही मिलती है और यही हमारी परवरिश को भी दर्शाती है। दरअसल वर्तमान वक्त में हम अक्सर एक सवाल सुनते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए क्या अंक तालिकाओं पर अच्छे अंकों का होना ही सफल जीवन की पहचान है। तो श्रोताओं, इस सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर नहीं में है। जीवन में सफल होना केवल अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि अच्छे अंकों के साथ साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का होना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। आज का समय विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। आधुनिक युग में विद्यार्थियों के पास ज्ञान हासिल करने के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं, लेकिन केवल शैक्षणिक सफलता ही किसी व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं बना सकती। अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और अच्छा आचरण ही व्यक्ति को सही अर्थों में सफल और सम्मानित बनाते हैं। ऐसे मूल्यों के विकास में अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण हमें ना सिर्फ स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़ जैसी संस्थाओं से प्राप्त होता है, बल्कि ये शिक्षण तो बिल्कुल शुरुआत में हमें हमारे परिवार, हमारे आसपास और हमारे समाज से मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में छात्रों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सवाल पैदा होता है कि नैतिक मूल्य हैं क्या? नैतिक मूल्य दरअसल श्रोताओं वो आदर्श हैं, वो सिद्धांत हैं जो इंसान को सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की समझ देते हैं। सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति, सहयोग, सम्मान, करुणा और जिम्मेदारी नैतिक मूल्यों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं श्रोताओं। ये सभी गुण छात्र के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उसे एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, प्रतिस्पर्धा के युग में नैतिक मूल्यों की ज़रूरत क्यों है? दरअसल वर्तमान समय है ही प्रतिस्पर्धा का युग। छात्र अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो कि सराहनीय है, लेकिन कभी कभी इसी प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ छात्र गलत रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं, जैसे झूठ बोलना, नकल करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ऐसे में श्रोताओं, अगर छात्र जीवन नैतिक मूल्यों की शिक्षा से ओतप्रोत है तो यही नैतिक शिक्षा उसे सिखाती है कि सफलता का मार्ग ईमानदारी, परिश्रम और अनुशासन से होकर ही गुजरता है। इसी तरह से चरित्र निर्माण में भी नैतिक मूल्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी छात्र में सत्य, ईमानदारी और अनुशासन जैसे गुण मौजूद हैं तो वो ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है श्रोताओं। आज के समय में सोशल मीडिया का प्रभाव छात्रों के जीवन पर बहुत अधिक है। इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्यों की शिक्षा ही छात्रों को सही और गलत के बीच में संतुलन बनाने में मदद करती है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सबसे महत्वपूर्ण परिवार है और फिर विद्यालय है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना केवल और केवल, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, कि विद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता अपने व्यवहार और संस्कारों से बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते हैं, जबकि शिक्षक शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से इन मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों की शिक्षा का समावेश ज़रूर हो। तो श्रोताओं, यही नैतिक शिक्षा हमें ये बताती है कि जब मुसीबत का समय आए तो हमें सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमें प्रयास करना है कि हम चाहे अपना जीवन संकट में डाल दें, लेकिन दूसरों के काम आ सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, दूसरों तक मदद पहुंचा सकें। तो इसी

तो श्रोताओं, ये प्रयास करना चाहिए हमें कि हमारा जीवन सफल तभी है जब इसमें अच्छाई है, सच्चाई है, प्रेम है, समर्पण है। वो जीवन ही दरअसल कामयाब जीवन है। तो इस प्रयास को हम बनाए रखेंगे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहेंगे। इसी इरादे के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए नितिन मुकेश और लता मंगेशकर को जानिसार अख्तर के लिखे गीत में। संगीत खयाम का है और फिल्म का नाम है नूरी।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत लीजिए सुनिए ये सुदास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत जिसे संगीत दिया है खय्याम ने फिल्म का नाम है त्रिशूल

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में ये आवाज़ थी आशा भोंसले की। शहरयार ने गीत को लिखा था, फिल्म का नाम था उमराव जान, संगीतकार थे खयाम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत एक बार फिर से खयाम का है, जानिसार अख्तर की है गज़ल, फिल्म का नाम है रज़िया सुल्तान।

0: नक्श लायलपुरी के लिखे इस गीत के साथ जिसे संगीत खयाम ने दिया था, आवाज़ आशा भोंसले की थी। फिल्म का नाम था आहिस्ता आहिस्ता। फिल्मी गीतों का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति

0: भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित

0: तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली

0: कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ते ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET-UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar

और संगीत के बिना मनुष्य पशुवत है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। कवि या साहित्यकार द्वारा जो कुछ भी रचा जाता है उसकी विषय वस्तु, उस रचना का कलेवर उसे समाज से ही प्राप्त होता है। रचनाकार जो महसूसता है, जो भोगता है और वातावरण से जितना स्पंदित व भाव सम्मिलित होता है उसे ही वह कागज पर उकेरता है। आचार्य शुक्ल ने भी साहित्य के विषय में बताया है कि साहित्य समाज की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। समाज की बदलती हुई चित्तवृत्तियाँ साहित्य में समन्वित होती है, प्रकट होती है। हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हालांकि सिद्ध साहित्य से प्रारंभ हिंदी के साहित्य के चिन्ह 8वीं सदी से सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत भारत की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां नष्ट होने लगती है। धर्म की स्थिति भी वितंडावाद के सहारे नजर आती है। इन परिस्थितियों में शासन व धर्म से दूर हो चुकी जनता के लिए बौद्ध सिद्धों की वाणियां व उनकी उलट बांसियां संजीवनी बूटी का कार्य करती है। साहित्य के प्रारंभिक 300 वर्षों में धार्मिकता, श्रृंगारिकता व वीर गाथात्मकता की प्रधान प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती है। सिद्धों की वाम साधना की अतिरंजना की प्रतिक्रिया में नाथों का उद्भव होता है और 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य गोरखनाथ एक चमत्कारिक महान धार्मिक नेता के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके नेतृत्व में सिद्धों की विभत्स साधना पर विराम लगता है और ईश्वर को घट के भीतर ढूंढने की निर्मल प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। जोई जोई पिंडे, सोई सोई ब्रह्मांडे का उद्घोष करते गौरख भारत को पुनः एकता के सूत्र में, धार्मिक एकता के सूत्र में आबद्ध करते नजर आते हैं। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य हिंदी साहित्य की भाषा अपभ्रंश की कुक्ष से निकलकर अपना प्रारंभिक स्वरूप प्राप्त करती है। प्रारंभिक काल में ही राज्याश्रित चारण भाट कवियों द्वारा अपने राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण वीरता व उनके प्रेम को प्रकट करता रासो साहित्य का उद्भव होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहूँ तो इन रासो रचनाओं के चरित नायक साहित्य में देवताओं की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। उनका एक कदम जब युद्ध भूमि पर पड़ता था तो भूमि कंपायमान हो जाती थी और दिन में अंधेरे या रात का सा वातावरण बन जाता था। इन चरित काव्यों से ही पृथ्वीराज राशो के रूप में हिंदी को प्रथम महाकाव्य व चंद्र बदाई के रूप में प्रथम महाकवि दाई के रूप में प्राप्त होते हैं। 7वीं सती से 14वीं सती तक राजस्थान के दक्षिणी भूभाग व गुजरात की भूमि पर विशुद्ध अपभ्रंश में जैन धार्मिक साहित्य भी ब्रह्मान रहता है, जिन्हें जैन कवियों द्वारा अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक रंग में रंगकर प्रस्तुत किया गया। इन 300 वर्षों में मर्यादावादी प्रेम पर आधारित लोक प्रेम कथा ढोला मारूरा दूहा का सृजन होता है। वहीं मैथिली भाषा में विद्यापति का राधा कृष्ण काव्य पदावली के मधुर पदों के साथ समस्त पूर्वी भारत में धर्म ग्रंथ की भांति आमजन गाया करते थे। इसी काल में तूतीय हिंद, खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदवी के मान, अमीर खुसरो अपने मनोरंजक व लोक साहित्य को सृजित कर आमजन में नवीन प्राणों का संचार करते प्रकट होते हैं। साहित्य का स्वरूप जनता की बदलती हुई अभिरुचियों का स्वरूप है। 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लाम अपने पैर फैला चुका था। इस्लाम की प्रतिक्रियावश इतिहासकार भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव इस्लाम के आने का मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की स्वाभाविक धार्मिक आस्था भी इस साहित्य की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहूँ तो जहाँ आदिकालीन साहित्य में मनुष्य को देवता के स्वरूप में सृजा गया, वहाँ भक्ति काल में देवताओं को आम मनुष्य की भांति सुख दुख में विलीन बताया गया है। भक्ति काल में कबीर विरहिणी के रूप में जिह्वा पर छालों व आंखों में झाइयों के साथ अपने राम से प्रेम करते हैं, वहीं झाई सी पद्मावती के अनिद्य सौंदर्य में ईश्वर के प्रति बिंब को प्राप्त करते हैं। सूर की गोपियों की हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण हैं, उन्हें तो हर कीमत पर कृष्ण की आकांक्षा है। वहीं तुलसी के राम धनु को धारण कर अधर्म के विनाश हेतु उद्यत दिखाई देते हैं। मीरा अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित करती है, लोक लाज को त्याग कर कृष्ण को पतितुल्य मानती है। वहीं मियां रसखान कृष्ण के बाल रूप को निहारने व उनकी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए समस्त वैभव की सामग्री न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तभी कहा गया है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। कबीर के राम गुणातीत व अनिर्वचनीय हैं, वहीं तुलसी के राम शील शक्ति व सौंदर्य

निधि है, कोटिक मनोज लजावन हारे हैं। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव चाहे कैसे भी हुआ है, कबीर हिंदू मुस्लिम पाखंड का पर्दाफाश करते समाज सुधारक के रूप में नजर आते हैं। वहीं जायसी हिंदू धर्म की परंपराओं का खूबसूरत वर्णन करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रत्यक्ष करते प्रकट होते हैं। वहीं सूर, तुलसी व अन्य वैष्णव भक्त कवि अपने सुंदर मधुर पदों, दोहा चौपाई व सवैयों से निराश हताश हिंदुस्तान में ऊर्जा, प्रेम व आशा का संचार करते व प्राण फूंकते दिखाई पड़ते हैं। भक्तिकालीन साहित्य ब्रज व अवधि में रचा गया। कृष्ण काव्य में सूरदास की साहित्य लहरी व नंददास कृत रस मंजरी से साहित्य एक नई दिशा की तरफ गमन करता है, जिसे सुदृढ़ पथ व आधार प्रदान करने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। तब कवि प्रिया के सृजन के साथ भाखा कवि भव मंदमती केशव दास प्रकट होते हैं और साहित्य में रीति तत्व की प्रवृत्ति अपने चरम पर होती है। 1650 से 1850 के मध्य ब्रजभाषा के माधुर्य व लालित्य के साथ रीति काव्य का सृजन होता है, जिसमें केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, दुलह आदि कवि अपने पांडित्य को प्रदर्शन करते रीति निरूपण कर रीतिबद्ध काव्य की सृजना करते हैं। वहीं भूषण जैसे रीतिबद्ध कवि हिंदू धर्म की रक्षार्थ वीरता दिखाने वाले आश्रयदाता राजा छत्रसाल व शिवाजी की वीरता की वास्तविक अभिव्यंजना कर बंदी बंधाई रीति की परिपाटी से भिन्न वीर रस की अभिव्यंजना कर रीतिकालीन राष्ट्र कवि की पदवी पर सुशोभित होते हैं। इसी काल में लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत कहकर रीतिबद्ध कवियों का उपहास उड़ाते घनानंद जब अपने विरह को कवित सवैयों में प्रकट करते हैं तो लगता है कि सच्चे प्रेम के पवित्र आंसू टपक टपक कर मलिनता के नामो निशान मिटाने को उत्सुक हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर जैसे कवि अपने हृदय की स्वाभाविक अभिव्यंजनाओं को अकृत्रिम रूप में प्रकट कर एक पवित्र साहित्य संसार को पाठक के समक्ष प्रकट करते हैं। हिंदी साहित्य में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना के साथ साथ खड़ी बोली में गद्य का आविर्भाव होता है। लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र जैसे प्रारंभिक गद्य के उन्नायक जिन्होंने गद्य का प्रारंभिक स्वरूप स्थिर किया। तत्पश्चात हिंदी उर्दू के भाषाई विवाद को समाप्त कर वर्तमान खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को भारतेंदु स्थिर करते हैं। भारतेंदु जी साहित्य की बंदी बंधाई रूढ़ परिपाटी से हटकर नए नए विषयों की ओर साहित्य को प्रवृत्त करते हैं, इसीलिए भारतेंदु आधुनिक काल के जनक कहलाते हैं। इनके काल में राष्ट्रीयता व राजभक्ति दोनों का मिश्रित रूप साहित्य में उपस्थित होता है। वहीं तत्कालीन समसामयिक विषय विधवा विवाह, शराबबंदी जैसे विषय साहित्य की विषय वस्तु बनते दिखाई पड़ते हैं। पद्य और गद्य ब्रज और खड़ी बोली में सृजित हुआ। भाषा का द्वैध शासन था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का परिमार्जन किया व कवियों को खड़ी बोली में पद्य सृजन को प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैथिली शरण गुप्त, हरिओद जैसे प्रभृति कवि खड़ी बोली में काव्य सृजन करने लगे और हरिओद द्वारा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का सृजन हुआ। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की, जो कि खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। द्विवेदी जी के युग में इनके व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप मर्यादावादी व प्रबंध इतिवृत्तात्मक साहित्य का सृजन हुआ। 1900 ईस्वी के पश्चात कलमकार गद्य की विविध विधाएं सृजित करने लगे। अब प्रचुर परिमाण में कविताओं के साथ साथ कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध प्रभृति गद्य रचनाओं का प्रणयन होने लगा। 1916 ईस्वी में निराला ने जूही की कली की रचना कर कविता को छंदों के शासन से मुक्त किया। खुल गए छंद के बंद, अब कविता लय में पाठक के हृदय तंत्र को झंकृत करने लगी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विरोध में छायावादी कवि चतुष्टय ने व्यक्तिनिष्ठ सूक्ष्म साहित्य की सृजना की, जो कि राष्ट्रीयता की भावना से लबरेज था। राम की शक्ति पूजा जहां युवाओं को नैराश्य त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने में प्रवृत्त करती है, वहीं प्रसाद कृत कामायनी मानवतावाद की स्थापना करती है। 1920 से 1936 ईस्वी के मध्य ही छायावादी युग में सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी प्रभृति कवियों ने अपने साहित्य में राष्ट्रवाद की ज्योति को प्रज्वलित किया। गांधी के युग में मार्क्सवाद कहाँ ठहरता। 36 से 43 तक मार्क्सवादी काव्य का सृजन अवश्य हुआ, लेकिन गांधी के अहिंसक मूल्यों
व मध्यम वर्ग की उपेक्षा के कारण साहित्य का ये रूप लंबा न चल सका। तत्पश्चात अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित अज्ञेय ने नवीन भाव, नवीन विषय और उपमानों के साथ साहित्य

0: तार सप्तक का प्रकाशन कर आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किया, लेकिन प्रयोगवादी साहित्य में भावनाओं का स्थान बौद्धिकता ने लिया। अतिशय यथार्थ बौद्धिकता व व्यक्तिकता की प्रवृत्ति से साहित्य पाठकों के हृदय में लोकप्रिय न हो पाया। प्रयोगवादी साहित्य का कटा छटा नवीनीकृत रूप नई कविता के रूप में जब सामने आया, ये रूप मध्यम वर्ग की कुंठाओं पीड़ाओं का खुला दस्तावेज रहा। धीरे धीरे साहित्य आधुनिक काल के विभिन्न संप्रतियों आधुनिकतावाद उत्तराधुनिकतावाद विडंबना इत्यादि संप्रतियों से संयुक्त हुआ और आज वर्तमान में आधुनिक साहित्य अब जीवन के विविध आयामों से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति मन से राष्ट्र के मन को प्रतिबिंबित करता आधुनिक साहित्य लोक मंगलकारी व उद्देश्यपूर्ण है। तुलसी के शब्दों में अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कीर्ति भनीति भूति भलसोई सुर सरी सम सब कहित होई।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में थी वार्ता हिंदी साहित्य का बदलता स्वरूप। वार्ताकार थे निर्मल रांकावत। लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार तरंग। समाचार तरंग के लिए इंतज़ार करें।
1: आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में आपका हार्दिक अभिनंदन।

0: श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता
1: और मैं माधुरी वशिष्ठ
0: इस बार के अंक में लेकर आए हैं हफ्ते भर की सुर्खियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे, कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी।
1: जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आयोजित रोजगार मेलों में 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
0: राज्य

0: मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित।
0: स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे। अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। इसके बाद श्री वैष्णव ने जालौर से भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: देश भर में आयोजित हुए रोजगार मेले के तहत प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थीं, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
3: आप जब भी कोई फैसला ले तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित भारत बनाएगी।
0: जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
4: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
5: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रमाण की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली बेटियां
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
6: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि

0: हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पुलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई, साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी और पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को भी मंजूरी दी है। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
2: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते।
3: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस नए लोगो को लॉन्च किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा की चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया है। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
4: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार। ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायक की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इसका 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पिछले हफ्ते आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
5: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है, आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट हूँ।
3: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनीकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
6: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
1: सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था।

0: इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम कुस्तला का रहने वाला हूँ और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 हेक्टर जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 112,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर।

0: मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
1: किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूं और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
2: हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथुन कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी। हमारे कोटा संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
3: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथुन के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहां पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा।
2: राज्य पक्षी गोडावण की संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिश से इस विलुप्त प्राय पक्षी गोडावण के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
4: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का काम करेगा।
2: वन मंत्री ने गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
5: समाचार तरंग में बस इतना ही, एक अन्य अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 9 बजने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए इंतजार करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता।

0: और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4,938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीम

0: ने गांव गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में विभाग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह दो चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। समय है लोक संगीत का। आज सुनिए सीमा मिश्रा के गाए लोकगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थी सीमा मिश्रा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज

0: आसान नहीं है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी, आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ छोड़ दीजिए।

0: मेरे काम आओगे। ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा। ठीक है जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
1: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि

0: समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको।
3: फेंका जनाब।
5: अरे ये क्या हुआ?
6: अरे बचो,
7: फटने
6: जा।
8: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
3: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
9: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
3: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
3: बहादुर सैनिक हो तुम।
8: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
9: Yes, come in.
11: Sir.
9: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
11: सर।
9: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
11: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
9: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
9: ओके। तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
11: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
9: गो अहेड यंग मैन।
11: सर।
8: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
8: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
12: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे।

0: ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
1: जी सर,
2: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
3: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
2: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
2: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
2: यस सर।
5: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
6: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
5: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए

0: प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर।
3: अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी।

0: उन्हें शत शत नमन।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह अनायास ही नहीं घटता। जीवन में नैतिकता बरकरार रहने दें, यही जीवन मूल्यों को बचाती है।

विचारशील बने, विवेक बने। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म गदर 2 से पहला गीत, जिसे सईद कादरी ने लिखा है। मिथुन का है संगीत, विशाल मिश्रा और नीति मोहन की हैं आवाज़ें।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है, हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप।

0: हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए राघव और प्रीतम की आवाज़ों में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, और ये गीत है फिल्म एनिमल से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाश।

सफर आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। जावेद अली और मधुबंती बागची की आवाज़ों में फिल्म पुष्पा 2 द रूल से सुनिए रकीब आलम का लिखा गीत, जिसे देवी श्री प्रसाद ने दिया है संगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में, लीजिए सुनिए फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अगला गीत। तेजपाल कौर ने गीत को लिखा है और संगीत है AR रहमान का।

0: ये वो भी ऐप से,
1: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। उदित नारायण और आशा भोंसले की आवाज़ों में सुनिए अगला गीत। साथ ही आवाज़ें सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है यादें। गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं अनु मलिक।
5: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब गुल मिले।

फिल्म संगीत में ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था कबीर सिंह, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। इरशाद कामिल ने गीत को लिखा था। सचेत परंपरा का था संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। मनोज मुंतशिर ने गीत को बोल दिए हैं। संगीतकार हैं मिथुन।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है शक्ति। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में शक्ति फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बहू बेगम। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रोशन ने।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म आरजू से। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी। गीत को लिखा है SH बिहारी ने, संगीत दिया है OP नैयर ने।

आशा भोसले की आवाज़ में ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे SH बिहारी के, संगीत था ओपी नैयर का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीत के बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत है RD बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में वो कौन थी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कभी कभी। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है खयाम ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने सुना कभी कभी फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था खयाम का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गाइड। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आंधी। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है आर डी बर्मन का।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आवाज़ों में आंधी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गाए हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफ एम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में

0: चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक मंथन। लेखक होंगे श्री मदन शर्मा। हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, रात 8 और रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे समय प्रबंधन और नियमित दिनचर्या, रास बिहारी बोस जयंती, बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलाएं, जरथोस्त नो डिसो। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता डिजिटल इंडिया और महिला उत्थान, वार्ताकार होंगी श्रीमती ईशाली हर्ष। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सीधा प्रसारण समाप्ति तक।

शाम 6:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही गीतकार के कुछ गीत। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40 पर आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। ग्रामीण

तो अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, नौतपा में ध्यान रखने योग्य बातें, बालिका हित आधारित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, रक्तदान जीवनदान। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक मंथन, लेखक हैं श्री मदन शर्मा।

Thank you.

0: गिद्धी, अरे ओ गिद्धी,
1: क्या है रे?
0: अरे क्या सिकुड़ कर बैठी है, आंखें तो खोल, अब तो तेरे पंख भी सूख गए हैं।
1: हाँ, पंख तो सूख गए हैं, लेकिन दहशत अभी भी बनी हुई है। कितना पानी बरसा है, भला हो इस पुराने पेड़ का जिसने हमको बचा दिया, नहीं तो हम भी बह जाते।
0: हाँ, लेकिन अब तो सब कुछ शांत है। देख ऊपर, सफेद बादलों से ढका शांत आसमान, और नीचे पानी से कटी गीली जमीन, और जमीन पर हमारा भोजन बिखरा पड़ा है। देख तो।
1: हाँ, देख रही हूँ। इधर 4-5 लाशें हैं, और उधर 3-4 मवेशी।
0: अपनी तो कई दिनों की छुट्टी हुई। इतना सारा भोजन, और यहाँ इस पेड़ की टहनी।

0: पर मैं और तू सिर्फ दो गिद्ध।
1: हाँ।
0: अरे तू इधर उधर क्या देख रही है? चोंच और पैनी करने के लिए कोई पत्थर?
1: नहीं रे, गीले मांस के लिए चोंच और पैनी करने की क्या जरूरत है? मैं तो दूर बस्ती की तरफ देख रही हूँ।
0: दूर बस्ती की तरफ? क्यों? क्या इतने भोजन से तेरा पेट नहीं भरेगा?
1: नहीं रे, इतना भोजन देखकर मेरा पेट तो वैसे ही भर गया है।
0: ढेर सारा भोजन सामने हो तो पेट उससे देखकर ही भर जाता है। फिर तू बस्ती की तरफ क्यों देख रही है?
1: देख रही हूँ कुछ बचा भी है या नहीं।
0: अरे कहाँ कुछ बचा होगा, मैं तो यहाँ बैठा हुआ बराबर देख रहा हूँ ना। कभी झोपड़ी बहकर आती थी तो कभी भैंस, कभी सामान, तो कभी इंसान।
1: हाँ मैंने भी देखा था, रात को एक लड़का बहता हुआ आया था। उसने बहते बहते किसी तरह हमारे सामने वहाँ पर जो पेड़ था ना, उसकी टहनी पकड़कर उस पर चढ़ गया था। हाँ लेकिन अब तो वो पेड़ भी वहाँ पर नहीं है।
0: हाँ पानी के तेज बहाव में वो पेड़ भी टूटकर बह गया होगा। अरे हमारे भी तो कुछ साथी उस पेड़ पर थे।
1: हाँ वो सब भी बह गए या उड़ गए, कौन जाने।
0: अरे अच्छा ही हुआ, नहीं तो इस भोजन में वो हमारा भी हिस्सा बटाते।
1: बस हमारी इसी आदत के लिए तो इंसान हमसे नफरत करता है। अरे हम अपनी ही सोचते हैं, दूसरों की नहीं।
0: अरे तो इंसान कौन से दूध के थोड़े हैं, क्या वो ऐसा नहीं सोचते?
1: नहीं रे, इंसान फिर भी इंसान है, उनमें बुद्धि है, समझ है। ऐसे संकट के समय वो ऐसा नहीं सोच सकते।
0: अरे छोड़ दी उनकी वकालत, अभी अकाल में नहीं देखा था एक दूसरे का पानी और भोजन नहीं चुराते थे? इंसान इंसान की मजदूरी अजब नहीं कर जाते थे? जवान औरतों के कपड़े तक नहीं उतरवाते थे वो? मैं इस इंसानी कौम को अच्छी तरह से जानता हूँ।
1: अरे लेकिन वो विपदा थी, ये विनाश है, ऐसे मौकों पर ये सब एक हो जाते हैं।
0: हाँ, किसी जिंदा लाश को नोचने के लिए ये सब एक हो जाते हैं।
1: तुझे तो इनसे नफरत हो गई है, अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आ चल मेरे साथ बस्ती की तरफ। मैं तुझे बताऊंगी कि इंसान फिर भी इंसान है, जानवर नहीं।
0: अच्छा और अगर मैंने तुझे बता दिया कि इंसान जानवरों से भी बदतर है
1: तो फिर मैं तेरी बात मान लूंगी और कभी तुझसे बहस नहीं करूंगी। चल उड़।
0: अरे नहीं, थोड़ा ठहर जा रही। पहले इस गीले मांस में एक चोंच को मार लें।
1: नहीं, अब हम उस समय तक इसमें चोंच नहीं मारेंगे जब तक कि हमारी बात का फैसला नहीं हो जाता।
0: ठीक है, मगर एक शर्त मेरी भी है कि अगर तू हार गई तो इस गीले मांस में उस समय तक अपनी चोंच नहीं मारेगी जब तक कि मैं अपना पेट अच्छी तरह से ना भर लूं।
1: मुझे मंजूर है।
0: तो चल उड़।
1: देख रहा है ना पानी से कितना नुकसान हुआ है?
0: हाँ नीचे अभी तक चारों ओर पानी ही पानी है।
1: हाँ जहाँ रेत का समंदर था अब वहाँ पानी का समंदर है। देख तो इस गांव को किस तरह उजड़ गया है।
0: हाँ गिद्धी वो देख, एक ऊंचे टीले पर कुछ लोग उदास से बैठे हैं। उतरे यहीं?
1: अरे उतर कर यहाँ बैठेंगे कहाँ, वहाँ कुछ दूर उस पेड़ पर चलते हैं।
0: हाँ

0: वहीं चल।
1: अरे इस पानी में बक्से लादे, ये दो आदमी कहाँ जा रहे हैं?
0: आ तो जा, इनकी बातें सुनते हैं।
2: अरे नंदू।
3: हाँ चंदू।
2: मैं तो अब आराम करूँगा, बस बहुत सारा लूट लाया।
3: अरे ये दिन आलस करने के नहीं है चंदू। यूं समझ अपना तो सीजन आ गया है, जितना माल मार सकता है मार ले।
2: अरे बस बहुत हो गया यार, कभी कभी तो मुझे शर्म आने लगती है।
3: शर्म किस लिए?
2: इसलिए कि बाढ़ के कारण लोगों का वैसे ही सब कुछ नष्ट हो गया, और ऊपर से रहा सा माल हम लूट कर ला रहे हैं।
3: अरे इसे लूटना थोड़े ही कहते हैं चंदू, हमको जो चीज जहां मिलती है हम उसे उठा लेते हैं, अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई और ले जाएगा या गल सड़ जाएगा चंदू।
2: अरे सुन, ये किसके कराहने की आवाज है?
3: वो देख इस नाले में, पेड़ में फंसा आदमी।
2: अरे हाँ चल जल्दी चल। कितना घायल हो गया है। अरे इसने तो फिर से गर्दन गिरा दी, देख मर तो नहीं गया कहीं।
3: ठहर मैं नाड़ी देखता हूं। धीरे धीरे चल रही है, जिंदा है। क्या करें, पेड़ से निकालकर कहीं ले चलें?
2: नहीं रे, इस पानी में इसे कहां ले जाएंगे, और फिर इसे ले गए तो हमारा इतना सारा सामान कौन ले जाएगा?
3: तो फिर
2: क्या, देख ले इसके पास कुछ है तो।
3: हाँ, गले में सोने की चेन और उंगली में अंगूठी है।
2: अबे तो देखता क्या है, निकाल ले दोनों।
3: ले पकड़। सोने की चेन तो तोड़कर निकाल ली, अब ये अंगूठी नहीं निकल रही यार, अंगुली मोटी हो गई है, फूल गई है ना।
2: अबे तो डरता क्यों है, चेन तोड़कर गले में से निकाल ली तो अब उंगली तोड़कर अंगूठी निकाल ले। तोड़ दे उंगली, काट डाल।
0: अरे तू इस तरह उठकर क्यों आ गई गिद्धी? वो कोई तेरी उंगली थोड़े ही काट रहा था, एक इंसान दूसरे इंसान की उंगली काट रहा था बस।
1: मुझसे वो सब नहीं देखा गया।
0: क्यों? तू तो इंसानों की वकालत कर रही थी ना?
1: हाँ, और अब भी करती हूँ। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते।
0: सब इंसान एक से ही होते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। भूल गई वो रात जब हम यहाँ से बहुत दूर रेल की पटरियों के पास ही एक पेड़ पर सो रहे थे और आमने सामने आती हुई दो गाड़ियां टकरा गई थी?
1: हाँ याद है।
0: तो वहां पर क्या हुआ था? रात के अंधेरे में बचे हुए इंसान घायल और मरे हुए इंसानों का क्या सामान नहीं लूट रहे थे? गले में से चैन नहीं तोड़ रहे थे, घड़ियां नहीं खोल रहे थे? इसीलिए कहता हूं ये इंसानी कौम है ही जानवरों से बदतर।
1: लेकिन गिद्ध इतनी जल्दी तो हम फैसला नहीं कर सकते। आ चल और आगे चले।
0: गिद्धे नीचे देख, वहां कितना सुंदर गांव बसा हुआ था और अब पानी ही पानी।
1: और पानी से ऊपर सिर निकाले कच्चे पक्के मकान, मिट्टी में धंसा हुआ ट्रैक्टर, वो देख गिरे हुए जानवर और पेड़।

0: ऐसी विनाश लीला हुई है। आप पानी से बाहर निकली मंदिर की उस बुर्ज पर बैठे।
1: ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर मैं इस गांव के पास ही उस गिरे हुए पेड़ की डाल पर बैठा करती थी। मैंने इस गांव की कई सुबह शाम देखी हैं।
0: मैं भी कई बार इधर आया हूँ। मैं तो इस गांव के हर आदमी को जानता था। धन्नू कुम्हार, तेजा बलाई, रामू जाट, सेठ बिहारी लाल और कई। सामने वो जो गिरा हुआ बड़ा मकान देख रही हो ना, वो सेठ बिहारी का है। बड़ा घमंडी था वो।
1: हाँ रे गिद्ध, मुझे मालूम है। सुन रे, मुझे तो आज भी डूबे हुए इस गांव की सुबह याद आ रही है। लग रहा है जैसे जैसे गांव का जोगी बाबा अभी भी भजन गा रहा है।
2: जग के सब बंधन झूठे, जग के

0: झूठे जग के सब बंधन झूठे, जग के सब बंधन झूठे।
1: ओफो फिर हमारा, मैंने लोगों से हजार बार कहा है कि इस जोगी बाबा को सवेरे सवेरे गांव में मत घुसने दिया करो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं।
2: तुम्हें उससे इतनी चिढ़ क्यों है?
1: अरे मुझे लगता है जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा है। दा कौड़ी का भिखारी और सेठ बिहारी लाल को चिढ़ाए।
3: सेठ साहब, सेठ साहब।
1: कौन है रे?
3: जी मैं हूँ धन्ना।
1: अरे धन्या, अरे अरे बाहर बैठ बाहर बैठ। अरे अंदर नहीं, अंदर मत आना। तेरी छोरी को भी लाया?
3: हाँ सेठ साहब, अरे सेठ जी को थोक दे।
4: नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे पढ़ती लिखती है या नमस्ते ही करती रहती है?
3: हाँ सेठ साहब, गांव के स्कूल से 8वीं पास की है। अब इसी के हाथ पीले करने थे, इसीलिए आया था सेठ साहब।
1: कर्जा वर्जा लेना है?
3: कर्जा? कर्जा नहीं सेठ साहब, मैं तो वो अपने ही रुपए वापस लेने आया था।
1: या? अपने ही रुपए? तेरे कौन से रुपए हैं मेरे पास?
3: शायद आप भूल गए सेठ साहब, मेरे कुछ रुपए रखे तो हैं आपके पास। अरे आपने ही तो कहा था कि रुपए मैं आपके पास रख दूं और आप मुझे ब्याज देंगे।
1: क्या? अरे भाग यहां से, झूठे कहीं के। सेठ बिहारी लाल से झूठ बोलता है। तेरा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है।
3: ऐसा मत कहिए सेठ साहब, मैं गरीब आदमी हूं, अगर आपने मेरा रुपया नहीं दिया तो मैं तो मर जाऊंगा।
1: मर? अरे कल मरता आज मर जा, चल भाग यहां से।
3: मुझ गरीब को मत सताइए सेठ साहब, मुझ गरीब को मत सताइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
1: अरे जा, तेरे जैसे धौंस देने वाले बहुत आते हैं, जाता है बुलाऊ नौकरों को।
4: चलो दादा चलो यहाँ से, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, हम लोग और मुसीबत में फंस जाएंगे। चलो।
2: ये क्या किया आपने? अरे अगर धन्ना ने कोर्ट कचहरी कर दी तो?
1: अरे तो क्या होगा, पहली बात तो ये कि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, और अगर कुछ कर भी दिया तो मेरे पास किस बात की कमी है? इतना बड़ा मकान, जमीन जायदाद, और फिर तीन तीन जवान बेटे। अरे इन गांव वालों को तो मैं कीड़े मकोड़े समझता हूँ, कीड़े मकोड़े, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
5: गिद्धी, ओ गिद्धी, अरे तू चुप क्यों हो गई रे?
6: कुछ नहीं, यूं ही इस गांव के सेठ बिहारी का ध्यान आ गया था।
5: अरे वो भी कोई इंसान था, जानवर था जानवर, हम तो लाशों का मांस नोचते हैं, वो तो जिंदा आदमियों का मांस नोचता था।
6: शायद तुम ठीक कहते।

0: ये सारे इंसान सेठ बिहारी लाल ही हैं। कोई ब्लैक करके नोचता है तो कोई दाम बढ़ाकर, सब एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसीलिए कहता हूँ मेरी बात मान ले और अब वापस लौट चल।
1: सुन रे गिद्ध, इस गांव के सारे लोग तो नहीं बह सकते, फिर वो कहाँ होंगे?
0: होंगे कहाँ, कहीं ऊंची जगह पर गए होंगे।
1: तो आ, फिर उधर ही चलते हैं, वहां शायद तुझे भी तेरी बात का जवाब मिल जाए और मुझे भी। आ चल उड़।
0: अरे उस गांव के लोग तो यहाँ हैं, उस ऊंचे टीले पर।
1: हाँ, वो रहा सेठ बिहारी, धन्ना, रामू, अरे सब यहीं बैठे हैं।
0: चल नीचे उतरते हैं।
2: गया, सब कुछ गया। सबर करो सेठ साहब। किस किस के लिए सबर करूं? जमीन जायदाद के लिए, या तीनों बेटों के लिए, या अपनी औरत के लिए? मेरी भी तो बेटी बह गई सेठ साहब। पाली ने हमको किस बात की सजा दी है? शायद ये मेरे पापों का फल है। जिन बेटों के लिए मैंने चल कपट से दौलत इकट्ठी की, उसको भोगने वाला एक भी नहीं रहा, एक भी।
3: गांव में किसी का बचा ही कैसे था? दो दिन से हम लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, पूरा गांव उजड़ गया, अपना तो बसेरा ही उजड़ गया सेठ साहब।
2: लेकिन अपने गांव को हम नहीं उजड़ने देंगे, नहीं। मेरे पास शहर के बैंक में रुपया है, मैं सारा रुपया गांव को फिर से आबाद करने में लगा दूंगा। हाँ, अब मेरी आंखें खुल गई है मेरी आंखें, बस किसी तरह लोग बच जाए।
3: भूखे प्यासे हम लोग कब तक बचेंगे सेठ साहब, कब तक जिंदा रहेंगे? चारों तरफ पानी ही पानी है, कौन आएगा हमारी मदद के लिए?
0: अरे इस जमाने में जब इंसान इंसान को खा रहा है तो कौन मदद करेगा इनकी? भूखे प्यासे यूं ही मर जाएंगे।
1: नहीं रे गिद्ध, मुझे अब भी विश्वास है कि इंसान इंसान की मदद जरूर करेगा।
0: पर कौन छलांग लगाएगा इस समंदर में?
4: जग के सब बंधन झूठे, जग के सब बंधन झूठे, जान कर अनजान बना है माया से।
5: ये तो जोगी बाबा की आवाज है।
2: हाँ, वो देखो कमर से ऊंचे पानी में सिर पर गट्टर रखे वो इधर ही आ रहा है। जोगी बाबा, आप कहां से आ रहे हैं? उस गांव की क्या हाल चाल है?
6: वही हाल है जो हमारे गांव का है।
3: भगवान जाने क्या होने वाला है।
2: इस गट्टर में क्या है जोगी बाबा?
6: तुम लोगों के लिए खाने पीने का सामान लाया हूं।
2: खाने पीने का सामान?
6: हाँ, जल तांडव का विनाश देखकर मैं किसी तरह शहर चला गया था और वहीं से ये सामान लाया हूँ। लो, अब थोड़ा थोड़ा पेट भरने लायक सामान ले लो, बाकी इसी में छोड़ दो, मुझे अगले गांव भी सामान पहुँचाना है।
7: मुझे दो, ये एक रोटी तो दो मुझे। अरे इससे क्या होगा?

0: रुको भाई, इस तरह मत झपटो, पहले सबसे पहले बच्चों को दो।
1: इस इतने से खाने से तो एक बार भी पेट नहीं भरेगा जोगी बाबा, ये तो नहीं के बराबर है।
2: अभी जितनी जरूरत है उतना ही ले लो, चिंता छोड़ दो, भय को निकाल दो। आसपास के और शहर के लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। इंसान इंसान को भूखा नहीं मरने देगा।
3: सुन रहा है गिद्ध? मैं नहीं कहती थी, इंसान फिर भी इंसान है, और अगर अब भी यकीन नहीं आता है तो आ उड़ता चल मेरे साथ। देख गिद्ध, वो देख, वो सामने खाने पीने के पैकेट गिराते उस हेलीकॉप्टर को देख, और देख देख वो खाने पीने की चीजों से लदी उस नाव को भी देख, और आस पास से आती हुई उस आवाज को भी सुन गिद्ध।
4: हमें अपने भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ना है, उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। जी हाँ, उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। इस संकट की घड़ी में अपने भाई बहनों को हमको अकेला नहीं छोड़ना है, उनकी मदद करनी है। उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। संकट की इस घड़ी में अपने भाई बहनों को हमें अकेला नहीं छोड़ना है, उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। जी हाँ, कुछ ना कुछ अवश्य।
3: देख रहा है ना गिद्ध, लोगों में कितना उत्साह है। अरे जल तांडव से जो विनाश हुआ है उससे घबराया नहीं है इंसान, बल्कि दूने उत्साह से फिर से निर्माण में जुट गया है। इसीलिए कहती हूँ, इंसान सच में महान है।
5: हाँ, तू जीत गई किसी, तू जीत गई, मैं हार गया।
3: अरे नहीं रे गिद्ध, ना मैं जीती हूँ और ना तू हारा है, हम दोनों बराबर हैं।
5: वो कैसे?
3: देख गिद्ध, इन इंसानों में चंदू नंदू और बिहारी भी हैं, और जोगी बाबा और मदद करने वाले दूसरे इंसान भी। अरे इंसान अपने संस्कारों से ही तो चंदू नंदू बनता है, और संस्कारों से ही जोगी बाबा। अगर ये इंसान अपने संस्कार और सोच के सांचे को सुधार ले तो फिर कोई चंदू नंदू बिहारी नहीं होगा, सब अच्छे इंसान होंगे रे।
5: तो ठीक कहती है दीदी, तो ठीक कहती है।
4: कर्म ही है धर्म तेरा, श्रम ही तेरी पूजा, सेवा करना साधना तेरी, दान ना कोई दूजा। कितनी तू माया जोड़े, मौत से पीछा नहीं छूटे, जग के सब बंधन झूठे, जग के सब बंधन झूठे, जग के सब बंधन।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत शान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है राज। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।
3: कसम में वादे प्यार

अरिजीत सिंह की आवाज़ में धड़क टू फिल्म का गीत आपने सुना। गीत को लिखा था सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीता श्रेयस पूर्णिक का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जावेद बशीर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। गीत को लिखा है रजत अरोड़ा ने, संगीत है प्रीतम का।

0: ये गीत आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज़ में, फिल्म का नाम था क्वीन, गीत को लिखा था अन्विता दत्त ने, संगीत था अमित त्रिवेदी का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
2: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें, और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
1: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सैलुंबर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में गढ़ी सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर BSF जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भापंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज।

0: शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है गीता शर्मा और अन्विती गोस्वामी।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में,
1: जहां आपकी दो सखियां मैं अन्विति गोस्वामी
0: और मैं गीता शर्मा
1: बनेंगी आपकी हमराज, आपकी साथी और करेंगी आपसे ढेर सारी बातें।
0: लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत तो कर लें अन्विति।
1: बिल्कुल।
0: तो सखियों, सबसे पहले कीजिए हमारा स्वीकार, प्रेम भरा नमस्कार। और सुनाओ अन्विति, क्या हाल है तुम्हारे?
1: ओहो गीता, में इतनी गर्मी में तुम हाल पूछ रहे हो? हाल तो भाई बेहाल ही है, एसी कूलर से निकलने का मन ही नहीं करता है, है ना। और कभी जो बाहर निकलना पड़ जाए तो सूरज के तेवर तो तुम देख ही रही हो।
0: बिल्कुल,
1: है ना। वो देखकर लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी ठंडी जगह पर निकल जाए। सच में इतनी गर्मी में अगर कोई कहते ना मुझसे कि पहाड़ों पर चलो, तो मैं बिना देर किए बस अपना बैग पैक कर लूं।
0: अरे अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी परेशान हो रही हो गर्मी से, तो मैं तुम्हें अपने साथ लिए चलती।
1: अरे
0: क्योंकि मैं तो ना अभी अभी पहाड़ों की सैर करके ही लौटी हूँ।
1: अरे वाह, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी ताजगी कैसे नजर आ रही है। और देखो मेरा हाल है ना, इतनी गर्मी में भी तुम इतनी ताजा ताजा लग रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसी रही तुम्हारी यात्रा?
0: अन्विति, यात्रा तो बहुत ही सुंदर रही मेरी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, बादलों से ढकी सड़कें।
1: अरे वाह वाह।
0: हाँ, मन्ना जैसे कुछ दिनों के लिए सारी थकान भूल गया था। लेकिन पता है, इतनी खूबसूरत यात्रा के बाद भी सबसे ज्यादा सुकून मुझे कब महसूस हुआ?
1: कब?
0: जब मैं अपने घर के सामने पहुंची।
1: हाँ ये बात तो वैसे तुम्हारी बिल्कुल सच है। दुनिया की कितनी ही सुंदर जगह घूम लो, पर अपने घर लौटने का जो सुकून होता है ना, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लेकिन पता है आने के बाद मैं क्या हुआ मेरे साथ में?
1: अरे क्या हो गया ऐसा?
0: पता है, हम घर के बाहर खड़े थे, अब थके हुए बहुत ज्यादा थे, और घर में अंदर जाने की भी जल्दी बहुत हो रही थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इतनी जल्दबाजी में जब मैंने पर्स टटोला तो देखा घर की चाबी ही नहीं मिल रही।
1: अरे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या हो गई है ना। अपने ही घर की चौखट पर खड़े हो और भीतर ना जा सकने की जो
0: असमर्थता हो गई है ना। सही में, पता है क्योंकि ना भीतर जाने का रास्ता तो उस छोटी सी चाबी पर ही टिका हुआ था।
1: बिल्कुल।
0: अब वो नहीं मिले तो हम कैसे जाएं अंदर?
1: देखो छोटी सी चीज भी कितनी बड़ी हो जाती है ना कभी कभी। आखिर फिर मिली कहाँ तुम्हारी चाबी?
0: पता है असल में हुआ ये कि हमारा जो काफी सामान था वो

0: अलग बैग में रखा गया था।
1: अच्छा,
0: हाँ, और घर की चाबी जिस बैग में थी ना, वो बैग परिवार के दूसरे सदस्य के पास में था, जो टैक्सी वाले से हिसाब किताब में व्यस्त थे, इसलिए वो बाद में आए।
1: अच्छा, तो ये बात थी। तो इतनी देर में तो तुम कुछ कर भी नहीं सकी होगी, बेबस होकर बस इंतजार ही कर सकती थी, है ना?
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इस इंतजार में पता है क्या हुआ, इस पूरे वाक्य के बीच में मेरे मन में ना एक और बात आ गई।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: खड़े खड़े सोच लिया।
0: हाँ, मैंने खड़े खड़े मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। हाँ, तो मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा आया कि हमारी खुशियों की चाबी अक्सर ना क्या होती है, हमारे मन का सुकून होता है, है ना? और हमारे अगर हम अपने जो हमारे फैसले हैं उनका नियंत्रण हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, तो फिर हम चाहकर भी अपने मन के दरवाजे तुरंत नहीं खोल पाते हैं, है ना?
1: इतनी बड़ी बात तुमने वहीं खड़े खड़े सोच ली, वो भी जीवन से संबंधित, है ना गीता? छोटी सी चाबी ने तुम्हें इतनी बड़ी सीख दे दी वहाँ खड़े खड़े ही, और यहाँ मैं हूँ कि अपनी खुशियों की चाबी मौसम के हवाले किए बैठी हूँ, गर्मी को दोष दिए जा रही हूँ, पहाड़ों पे भाग जाना
0: चाह रही हूँ, है ना? लेकिन अन्विति, खुशियों को ढूंढना कहीं दूर जाने से ज्यादा जरूरी है, उन्हें महसूस करना। कभी कभी क्या होता है, किसी अपने के साथ में बैठकर अगर हम दो बातें कर लेते हैं तो भी हमारे मन को ठंडक मिल जाती है।
1: वो तो सही बात है।
0: या फिर कभी हम बच्चों की हंसी को ही देखते हैं तो उसमें ही खुश हो लेते हैं, या फिर कभी एक प्याली चाय भी अगर हमें मिल जाती है ना तो भी हमारा दिल मुस्कुरा जाता है
1: और ठंडक मिल जाती है गर्मी में भी, है ना? और कभी किसी पुराने गीत को सुनकर भी तो गुनगुना कर हम खुश हो सकते हैं ना?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलो, क्यों ना हम इस गीत के माध्यम से मन को शीतल कर लेते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अनविति, अभी हम यही कह रहे थे ना कि जीवन में सभी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें, प्रसन्न रहें, है ना, ताकि प्रेम की वर्षा चारों ओर हो सके। और पता है, ये जो प्रेम की वर्षा है, जो खुशियां हैं, ये जिम्मेदारी त्योहारों से बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता है।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो हम सभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। साथ ही आपसी भेदभाव को भी हम नजरअंदाज कर सभी से मिलना जुलना, हंसना बोलना, प्रेम, सेवा, यही तो सब सिखाते हैं ना हमारे त्योहार। और हमारे त्योहार ना केवल परंपरा ही नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ खुशियों का सुंदर उपहार होते हैं।
3: बिल्कुल सही बात कही तुमने। जहां हमारे त्योहार खुशी के परिचायक हैं, वहीं कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो गम को जताने का भी माध्यम है, है ना। जहाँ खुशी के अवसर पर सभी दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नाच गाना करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, वहीं कुछ त्योहार हमें त्याग, बलिदान और बीते दुखों की याद भी दिलाते हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और इसीलिए अनविति, आज हम बात करेंगे पारसी धर्म के एक ऐसे त्योहार के बारे में जो त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। जी हाँ सखियों, जरथुष्ट नो दिसो पारसी धर्म के संस्था

0: पक पैगंबर जरथुष्ट की पुण्यतिथि या मृत्यु वर्षगांठ को कहा जाता है। ये दिन सखियों पारसी समुदाय के लिए एक शोकपूर्ण लेकिन याद करने वाला दिन है, जिसमें वे पैगंबर द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद करते हैं।
1: बिल्कुल सखियों, धर्म कोई भी हो लेकिन सभी धर्म हमेशा सभी को सच्चाई की राह पर चलने, अच्छे कर्म करने और सदाचार का पालन करने का ही संदेश देते हैं। वैसे ही पारसी धर्म में भी एकमात्र सर्वोच्च ईश्वर अग्नि को माना जाता है और यही बताया जाता है कि मनुष्य सत्कर्म और अच्छे आचरण के दम पर ही मुक्ति को पा सकता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही अनविति पता है पारसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने प्रकृति के सम्मान पर भी बल दिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों की रक्षा करना और उन्हें शुद्ध रखना पारसी समुदाय में धार्मिक कर्तव्य माना गया है और अग्नि को ईश्वर की शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए पारसी लोग इस दिन अग्नि मंदिर जाते हैं और विशेष प्रार्थनाएं करते हैं और पैगंबर जरथुष्ट के जीवन पर व्याख्यान भी आयोजित करते हैं और उनकी शिक्षाओं को आचरण में उतारने पर बल देते हैं।
0: बिल्कुल सखियों, तो इस तरह ये त्यौहार पैगंबर जरथुष्ट को याद करने और उनकी कमी को महसूस करने और उनके जीवन के संघर्षों को बयां करने का दिन है, जो हमें सिखाता है कि कितनी ही विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हों, हमें हमेशा अच्छा और सच्चा जीवन ही जीना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो सखी त्योहार हो या परंपराएं हो, हर बात हमें यही सिखाती है कि जीवन में प्रेम, एकता और अच्छे विचार हमेशा बने रहने चाहिए।
0: बिल्कुल, और अनविति तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसे अच्छे विचारों वाले, प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार वाले लोगों से जब हमारा मिलना होता है, चाहे हम उनसे पहली बार ही मिल रहे हों, लेकिन उनका अपनत्व भरा व्यवहार ऐसा लगता है जैसे कि युगों युगों का साथ हो।
1: गीता, तुम्हारी इसी भावना को ये गीत जरूर बयां कर रहा है।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
3: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
8: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
7: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
9: गीता, अभी हम याद कर रहे थे त्योहारों के माध्यम से अच्छे विचारों की, त्याग और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की बात कर रहे थे हम। तो जब भी ऐसी बातें होती है ना, तो हमारे मन में उन महान लोगों की छवि उभरती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। और ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में से एक नाम है रास बिहारी बोस जी का, जिनकी जयंती पर आज यानी कि 25 मई को हम उन्हें सादर स्मरण कर रहे हैं।
10: जी हाँ सखियों, रास बिहारी बोस जी ने गदर

0: के माध्यम से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी और मातृभूमि की स्वतंत्रता को जीवन का सर्वोच्च ध्येय मानने वाले राज बिहारी बोस का त्याग और समर्पण सभी की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा। और सखियों, ऐसे ही त्याग और समर्पण का पर्याय है हमारी भारतीय सेना भी, तो आइए सुनते हैं उनकी गौरव गाथा।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सखियों, आज का भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां हर सेवा, हर जानकारी और हर अवसर अब ऑनलाइन होता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने अनविति, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल क्रांति में क्या महिलाएं बराबरी से शामिल हैं?
0: गीता, इसी सवाल का जवाब हम पाएंगे एक वार्ता के जरिए, जिसका विषय है डिजिटल इंडिया और महिला उत्थान। वार्ताकार है श्रीमती ईशानी हर्ष।
2: डिजिटल इंडिया की भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है। जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया का भी उतना ही महत्व है। हमारे देश के नागरिकों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार ही हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो। वो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में ही प्रोजेक्ट तैयार हो, जिस आयु वर्ग के हैं उस हिसाब से ही तैयार किया जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए उस अनुसार ही प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। हमारे देश के नौजवान अपने हुनर का उपयोग करते हुए, नए नए आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए और डिज़ाइन इन इंडिया इस कंसेप्ट को पकड़ते हुए डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की, क्या है डिजिटल इंडिया वीक और क्या क्या उपयोग है इसके, इसके किस तरह विकास संभव है, आज मैं इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत के उच्च श्रेणी के बहुत से उद्योगपतियों ने अपने विचार डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन के लिए शेयर किए। डिजिटल इंडिया क्या है देशवासियों को समझाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए की बहुत सी योजनाएं प्रस्तावित की है, जिनमें डिजिटल लॉकर्स, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। 11 राज्यों में भारत नेट और नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क NGN भी डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। जिन प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोग्राम सम्मिलित किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली दी जाए, जिससे लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लाभ मिल पाए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस प्रोग्राम को सुचारू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। डिजिटल इंडिया वीक के तहत देश के बड़े बड़े जिलों में प्रचार वैन भी घूमेगी, जो लोगों को मोदी सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में बताएगी। इस प्रोग्राम के तहत साल 2019 तक देश के सारे काम कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा IT प्लस सूचना प्रौद्योगिकी IT बराबर कल का भारत IT। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह तरह के आइडिया और विचारों का है, एकल एवं व्यापक विजन में समाहित करता है, ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा बनाना, मांग पर संचालन एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। हर नागरिकों के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचों तैयार किए जाए, नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाए, मोबाइल फ़ोन व बैंक खातों की ऐसी सुविधाएं जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने के लिए निजी स्थान और सुरक्षित साइबर स्पेस बनाए जाएं, सभी विभागों और न्यायालयों में

पर समेकित सेवाएं समेत शासन और सेवाओं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता सभी नागरिकों को क्लाउड ऐप पर उपलब्ध कराने का अधिकार है। डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाओं को प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बढ़ाना, नौकरियों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रदान करना, जल्दी पैदावार कार्यक्रम शुरू करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत की, जिससे सशक्त भारत का निर्माण हो। इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। डिजिटल भारत के सभी बड़े लक्ष्यों में शामिल है 2019 तक सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना, सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना, सभी महिलाओं को इंटरनेट के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बैंकिंग क्षेत्रों में भी विशेष तौर पर योजना को अमल में लाया जाए। शहरी और ग्रामीण महिलाओं के उत्थान से ही डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में सफलता मिल पाई जा सकती है। एक परिवार की नींव होती है एक महिला। बच्चे के ध्यान रखने, घर का ध्यान रखने, घर की अर्थव्यवस्था भी उसी के हाथों में होती है। किस तरह से वो कम दाम में अधिक और अच्छा काम कर सके, इसके लिए एक महिला को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आदि सभी विषयों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के समय में महिलाएं अच्छी समझ से काम करने में सक्षम हो रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी इंटरनेट समझाया जाए, उसकी उपयोगिता के बारे में समझाया जाए, तो वे भी अपने कृषि और अपने लघु उद्योगों को एक अलग ही पहचान दे पाएगी, जिससे भारत का विकास होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और हमारा देश दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति बनकर उभरेगा। इंटरनेट के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे के संपर्क में आएगी और अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे पाएगी। जिस प्रकार उत्तराखंड के अल्मोड़ा की 1000 महिलाएं चिल्ली प्रोडक्शन का काम करती है, यह एक साथ मिलकर काम करती है, और एक तरफ जोधपुर में भी 1000 महिलाएं इसी तरह का काम करती है। इंटरनेट के माध्यम से इनमें टाइप हो सकता है, जिससे उद्योग बढ़ेगा, महिलाओं में आपस में कनेक्शंस बढ़ेंगे, संपर्क बढ़ेंगे और भारत का विकास होगा। महिलाओं को कंप्यूटर शिक्षा देने से भी महिलाओं का, परिवार का, देश का उत्थान संभव है। महिलाएं अपने बच्चों को कंप्यूटर पर पढ़ाएगी, उन्हें नई नई तकनीकें सिखाएगी, उन्हें देश और दुनिया की खबरें दिखाएगी, नई तकनीक समझाएगी, जिससे बच्चों का विकास होगा, और जब बच्चों का विकास होगा तब भी देश का विकास होगा। सरकार इस तरह की हर महिलाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। महिलाओं को कंप्यूटर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा शिविरों का आयोजन करेगी और कई कंप्यूटर कोर्सेज भी चालू करेगी, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिजिटल इंडिया के दम पर बदलेगी भारत की तस्वीर और बहुत से फायदे होंगे, जिनमें से हैं, अब कागजी काम लगभग बंद हो जाएगा। जमीन हो, मकान हो, कि रजिस्ट्री हो, हर जगह कंप्यूटर होगा। अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल में कंप्यूटर में हर प्रकार की ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिससे हमेशा के लिए अपना डेटा सुरक्षित रहेगा। ई प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। BSNL अब टेलीकॉम एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क का उपयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस, टैक्सी में CCTV कैमरे लगेंगे,
देश में बीपीओ और कॉल सेंटर की संख्या

0: संख्या बढ़ेगी तो नौकरियां भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जाएगा। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना में सभी लाभान्वित होंगे। साथ ही महिलाओं को फायदा मिलेगा, उनका अपना बैंक खाता होगा जिसके माध्यम से वे सुरक्षित पैसों का लेन देन कर पाएगी। अब उन्हें घर बैठे नौकरियों का आवेदन करने की सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन भेज सकेंगे। इस योजना से लघु उद्योगों में कार्यरत महिलाएं भी लाभान्वित होगी तथा हर तरह की सूचना घर बैठकर ही प्राप्त कर पाएगी, जिससे लघु उद्योगों का विकास होगा और महिलाओं का उत्थान होगा। महिलाओं के उत्थान के साथ ही देश का भी उत्थान होगा।
1: तो सखियों, वार्ता के जरिए हमने जाना कि डिजिटल होता भारत महिलाओं के उत्थान में कितना कारगर सिद्ध हो सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा अन्विति तुमने ये बात। और सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता जिसका विषय था डिजिटल इंडिया और महिला उत्थान। वार्ताकार थी श्रीमती ईशाली हर्ष। और अब सखियों आपसे मिलेंगे हम थोड़े से अंतराल के बाद में, करेंगे फिर से ढेर सारी बातें।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: अच्छा गीता, ये बताओ, कार्यक्रम की शुरुआत में तुमने जो बताया कि तुम अभी अभी वादियों की सैर करके लौटी हो, तो क्या तुम्हारा मन अभी भी उन्हीं वादियों में अटका हुआ है या फिर से नियमित दिनचर्या में लौट आई है?
4: क्या बताऊँ अनविति, मन तो अभी भी वहीं वादियों में कहीं कभी कभी घूम ही जाता है।
3: अच्छा,
4: पता है जब कभी फ़ोन की गैलरी देखती हूँ तो उन हज़ारों खींची हुई फ़ोटोज़ के माध्यम से, तो कभी वहाँ गुजारे हुए लम्हों को याद करते हुए बार बार वहीं लौट जाता है मेरा मन।
3: अच्छा,
4: लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चाहे कहीं भी घूम आओ, घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं है।
3: वो तो है, लेकिन देखो तुम बातों को घुमा नहीं सकते, मुझे तो ये बताओ कि मेरे लिए क्या लेकर आई हो?
4: अरे अनविति, लाई हूँ मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आई हूँ।
3: अच्छा,
4: लेकिन थोड़ा सब्र करना होगा तुम्हें, क्योंकि अभी तक ना ठीक से अनपैकिंग करने का समय ही नहीं मिला है मुझे।
3: अच्छा, अच्छा।
4: यात्रा से लौटकर इतनी थकान थी कि बस यही सोचती रही कल कर लूंगी, थोड़ी देर में कर लूंगी, और बैग ना बस वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं।
3: गीता, वैसे जो तुम ये कह रहे हो ना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है।
4: अच्छा,
3: घर लौटकर सबसे मुश्किल काम है ना यही लगता है कि फिर से अनपैकिंग कर दूं और धुलने वाले कपड़े अलग करना, सामान को फिर से अलमारी में व्यवस्थित जमाना। लेकिन पता है, हम जितना इस काम को टालते हैं ना, उतना ही हम अपनी परेशानी को और बढ़ा रहे होते हैं।
4: बिल्कुल सही कह रही
3: है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी रूटीन लाइफ की तरफ लौट रहे होते हैं और उस पर ये जो काम हम टाल रहे होते हैं ना, तो सारे काम मिलाकर काम दुगने और हो जाते हैं, और यही छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे

0: बड़ी उलझन बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने अन्विती, जैसे घूमना फिरना, आराम करना, छुट्टियां मनाना, ये सभी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही अपने समय और दिनचर्या को व्यवस्थित करना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल, पता है मैं तो बच्चों को भी यही समझाती हूँ, अभी देखो ना बच्चे छुट्टियों में मौज मस्ती में धमा चौकड़ी में मगन है ना, और फिर क्या होगा, स्कूल से मिले हुए होमवर्क को वो अभी भुलाए बैठे हैं।
1: सही कह रही हो।
0: और छुट्टियों के आखिरी दिनों में उन्हें अचानक से याद आ जाएगा कि स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना है, बिखरी किताबें समेटनी है, स्कूल बैग को यूनिफॉर्म को टटोलते नजर आने वाले हैं हमारे बच्चे।
1: सही कह रही हो तुम। और फिर पता है हम और हमारे बच्चे यही सोचेंगे कि काश थोड़ा थोड़ा काम हम समय पर कर लेते तो हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है ना, और फिर हमें भी उनके साथ में अलग से लगना पड़ेगा। और हम सोचते रह जाएंगे कि ये छुट्टियों के दिन कितनी जल्दी हवा हो गई, समय भी कम रह गया हमारे पास में।
0: अंकिता पता है सच क्या है, वैसे कमी समय की नहीं होती है बल्कि प्रबंधन की होती है ना। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि वक्त रहते अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करें हम कि काम भी शांति से हो जाए और मन भी हमारा थका हुआ महसूस ना हो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम थोड़ी सी योजना और थोड़ी सी व्यवस्थित आदतों के साथ में काम करते हैं तो हमारी सुकून भरी दिनचर्या हमें पूरे दिन शांति और ताजगी का अनुभव देती है।
0: बिल्कुल गीता, देखो ना हमारे इस कार्यक्रम को भी हम कितने सुनियोजित तरीके से लेकर आते हैं ना, जहाँ कुछ ही समय में हम सखियों से बातें भी कर लेते हैं और गीत संगीत के माध्यम से उनका मनोरंजन भी कर लेते हैं, तो हुआ ना असली समय प्रबंधन।
1: बिल्कुल।

0: अनविति, जैसा कि तुम और हमारी सखियां जानते हैं कि अभी भी मैं घूम करके आई हूँ, है ना, तो पता है वहाँ जब मैं घूम रही थी और जब रात को सोई तो वहाँ पर भी मुझे, है ना, एक सपना नजर आया।
1: अच्छा, जरूर घर की याद सताई होगी, है ना।
0: अरे सपने में पता है मैं अपने बचपन में पहुंच गई थी। हाँ, वही मैं देख रही थी कि जो मेरा घर है वो पुराना बड़ा सा आंगन है।
1: मैंने कहा था ना, घर की याद जरूर आई होगी।
0: तो ना सारे हम बच्चे सभी खेल रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और पता है हम खेल भी कौन कौन से खेल रहे थे, जो अपने पुराने खेल होते थे ना, रस्सी कूद, सतौलिया, छुपन छुपाई, हाँ वो सारे खेल मैं देख रही हूँ। और जो हमसे हमारी बड़ी बहनें हैं वो भी खेल रही हैं और घर के छोटे छोटे काम भी साथ में कर रही हैं।

0: हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहीं दूसरी तरफ हमारी जो दादी माँ हैं वो छोटे बच्चों को नहला धुला रही हैं, उन्हें कहानियाँ सुना रही हैं, मतलब ना सभी मिलजुल करके अपने काम कर रहे हैं। बहुत ही ना अच्छा लग रहा था मुझे उस सपने को देख करके, लेकिन अब पता है जब रियलिटी में मैं जैसे ही खुद को देखती हूँ तो भाई अब ये तो सिर्फ बचपन अपना एक सपना ही रह गया है।
1: बिल्कुल, बचपन के जो हमारे दिन थे ना, जिसमें ना तो पढ़ाई की चिंता थी उस समय, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल के कोई खतरा होते थे, है ना, और नाश्ते लंच और डिनर से लेकर टीवी भी देखनी हो ना तो उसका भी एक फिक्स टाइम होता था, है ना, और आउटडोर के नाम पर जैसे दिवाली, दशहरा मेला या फिर रामलीला में वहाँ घूम जाते थे और बस इतना ही मिल जाता था ना, उसी पर
0: खुश हो जाते थे, मस्त घूमते थे।
1: बस हमारी छोटी सी दुनिया थी और छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, है ना, जो पूरी होती हम खुश हो जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे तो यूँ लगता है कि कितना मासूम और सीधा साधा सा होता था ना वो बचपन।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन पता है जब मैं आज के बच्चों को देखती हूँ ना तो सोच में पड़ जाती हूँ कि आज के बच्चे इन सब चीजों से दूर, अपने बचपन से दूर एक हाईटेक बचपन जी रहे हैं। हाँ, आज उनका बचपन ना टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और वैसे देखा जाए तो आजकल के बच्चे स्मार्ट तो बहुत हो गए हैं, आज उन्हें हर चीज के बारे में मालूम है। हाँ, चाहे वो मोबाइल कंप्यूटर के बारे में हो, गेम्स के बारे में हो, रोबोट्स के बारे में हो, और वैसे देखा जाए तो आज के बच्चे ना सूचनाओं का इंसाइक्लोपीडिया ही हो गए हैं। हाँ, लेकिन ना इतना कुछ होने के बावजूद भी आज का बचपन बेहद खाली, बेचैन और उदास सा नजर आता है। उम्र से जुड़ी चंचलता, बाल सुलभ शरारतें, सहजता और अलहड़पन बच्चों में रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो बचपन की पूरी तस्वीर ही बदल गई है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी का जिम्मेदार हम बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को मान सकते हैं ना। इस दौर में हम टेक्नोलॉजी से अछूते भी नहीं रह सकते हैं, ये भी बात एक सही
0: है।
1: बेशक बच्चों की दुनिया बदल रही है, नई आहटों से वो रूबरू हो रहे हैं, मगर अपने बच्चों को ये बचपन को बचाने के लिए हमें ज़रूरत है कि पुराने या आउटडोर गेम्स से हम उन्हें जोड़ें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, आउटडोर खेल जो हैं वो हमारे शरीर को न केवल चुस्त दुरुस्त रखते हैं बल्कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। साथ ही इनसे हमारा मन भी प्रसन्न होता है, और जब बच्चे खुले मैदान में खेलते हैं ना तो बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना का भी विकास होता है।
1: और बच्चों का जो है ना फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है, नए दोस्त बनते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं और साथ ही हार और जीत दोनों को ही स्वीकार करना भी सीख जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इसलिए सखियों कोशिश करें कि आप बच्चों को आउटडोर गेम्स खिला सकें। लेकिन ना बच्चे जाएंगे कैसे ग्राउंड तक, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप उन्हें लेकर के जाएंगे तभी बच्चे आपके साथ में जाएंगे। लेकिन आजकल क्या है ना बच्चे अनविति, वो ये कहते हैं कि है ना भाई हम वहाँ जा करके क्या करेंगे, है ना, या फिर एक बार वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के साथ में। तो आप बच्चों को साथ में अगर खेलेंगे तो उत्साह के साथ में आपके साथ में खेलेंगे।
1: बिल्कुल, और जब बच्चे ग्राउंड तक पहुंचेंगे और उनके दोस्त भी बनेंगे तो धीरे धीरे उनका खेलों के प्रति उत्साह बढ़ ही जाएगा गीता,
0: और वे सीख पाएंगे कि खेल में मेल कैसे होता है।

0: आशा है सखियों आज की आपकी और हमारी ये बातें आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आगे दीजिए अपनी सखी अनविति गोस्वामी और
1: गीता शर्मा को
0: नमस्कार।

0: evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर

0: लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है।

0: विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

समाप्त हुआ, नमस्कार। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कल हो न हो।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बाबुल। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

बाबुल फिल्म का गीत आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत शफकत अमानत अली की आवाज़ में। उनका साथ दिया है शंकर महादेवन और कारा लिसा ने। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

कभी अलविदा ना कहना फिल्म का गीत आपने सुना, शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और केरलेसा की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राज रीबूट। गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत है जीत गांगुली का।

गीत गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने, संगीत था जीत गांगुली का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत शान की आवाज में। फिल्म का नाम है सांवरिया।

की आवाज़ में गाए सांवरिया फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक

ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण

0: शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards

0: Ceremony as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ. और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009, एंड ही वाज नोन फॉर हिज इमोशनल बॉन्ड विद हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं, और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी, लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज।

0: is co-chairman of Professor the Indo-UK Financial
1: Vijay
0: Partnership.
1: Vijay Kumar Malhotra, Marnopurant, Lok Karya, unke putra, Shri Ajay Kumar Malhotra.
2: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे. उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते.
0: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palniswamy, chikitsa gastroenterology.
2: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं. आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था.
0: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
0: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी.
2: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम. 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया. नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं.
0: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स.
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी.
2: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की. 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत.
0: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स.
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन.
2: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं. आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है.
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987, वेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
2: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain. Kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई.
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं.
0: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
2: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954

0: जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री तुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: During spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हूँ।
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर
0: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the vice president to report on the security needs.
2: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप,

0: ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए, उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B.C. Roy
2: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग PhD लेवल स्टडीज।
2: हाजी कासम कला ढोलक।
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar Kala Theater.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने NCERT में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर 1 हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने

0: सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी
2: देवबा लाड दादा लाड कृषि
0: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
2: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
1: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
0: 69 वर्षीय Dr. Mandal, International Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला ही हैज अ लॉन्ग टर्म विजन दैट बाय 2047 नो सिटीजन शुड लूज लाइफ बिकॉज़ ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स। फॉर दैट ही हैज ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया।
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
2: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendra

0: मुखोपाध्याय।
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: श्री मुखोपाध्याय
0: श्री सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri
2: been supplied to the
0: Pajanivel Khel Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
1: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
0: Deepika Reddy, Kala Nritya.
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती

0: Reddy was the first woman chairperson of Telangana Sangeet Natak Academy, governing council member Sangeet Natak Academy Delhi, and has received prestigious awards like Sangeet Natak Academy Award and many more.
1: Dr. Palkonda Vijay Anand Reddy, Chikitsa Oncology.
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य
2: एवं शिक्षा विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka pramaan ki unka kitna bada contribution raha hai.
0: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahabad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
1: Shri Yumnam Jatra Singh Marnoprant Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
2: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
2: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
2: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16

0: यात्रा वृतांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
3: Sridhar ji, Akashvani ke up mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
3: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर visceral leishmaniasis कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लाइशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
2: एंड डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
3: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
3: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
3: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
3: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर।
3: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजर

0: नाटकाती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals
2: Dr.
1: and conferences.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: Professor 2019. Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Route Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: Please, my attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार

अभी आप सुन रहे थे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 के वितरण का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक

0: चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की

0: गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। गीतकार हैं समीर। सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया मन फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं संजीव दर्शन।

0: Akashwadi at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत समीर गीतकार समीर के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा

0: शब्दक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सत्रह अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
2: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारा के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन

0: परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में 2 नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
2: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए। जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पन्ना, कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहरा करेगी।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुक कर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों NCD की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। CMHO डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री DLED परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक MD बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने

0: बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिलारा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। काल सांचू सीमा चौकी माथे प्रहरी सम्मेलन माए शामिल फैला। और नौतपा सरू भेवन सागई प्रदेश माए गर्मी रो जोर और बध्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। इस साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह माए 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानु नवाजी चिया। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कलारा हलका माए योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी चिया। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी चिया। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां माए प्रदेश रा भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढंडा चराता थका वारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख लेवनो शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावन हासिल कीनी। वे डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माई कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कानियों नवाजी चिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यान जोग है कि साल 2026 सारू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माए और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवासी चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी रे मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इन्हें बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनता ई अभियान माई शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
2: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
1: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी न बचावन वाणा प्रबंधन और पाणे तू जुड़ी परियोजना रा कामा रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल 3 खास बंधा ईसरदा, गलवा और बंध बरेठाऊ निकला है। मुख्यमंत्री

0: ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਾਵੜਾ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ, ਪੂਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ, ਅਰ ਬੱਚਾ ਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਏ ਟੀਨੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨ ਜੈਪੁਰ ਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਮਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਚੈ।
1: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए, जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पन्ना, कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि
0: रेलवे गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुबिता सारू गुजरात रा भावनगर टर्मिनस और दिल्ली री शकूर बस्ती बीच हर सप्ताह खास गाड़ी चलावन रो फैसलो कीनो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी तीनी। वे बतायो के आ गाड़ी 29 मई उ 27 जून ताई हर सप्ताह चलाई चावेला। आ रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट वहती जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत ऑनलाइन अर्जी देवन सारू पोर्टल काल 15 दिन सारू खोलियो जावेला। देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत आज पाली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि योजना रा तहत बुजुर्गों ने रेल और हवाई जहाज रे जरिए मुफ्त तीर्थ करायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक फेरु सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। अर नौतपा सरू वेवनसा गई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं राकेश कुमार जोशी और अनिल सिंह खीचड़।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालु ग्रामीण भाई बहना ने और अनिल भाई थाने घना घना राम राम। कार्यक्रम में आप स्वागत है
1: भाई राकेश थाने भी घणो घणो राम राम और सगला किसान भाई बहना ने घना घना राम राम। और देखो आप चौपाल रे मई बैठा हाँ और आपनी जकी बतलावण है वो खास तौर से जको मौसम है वह से संबंधित अपनी खेती बाड़ी से संबंधित और अपने किसान भाई बहना ने जकी नई तकनीक आई है
0: भी संबंधित
1: जानकारी रे
0: अपने पशु जिका है बिया से संबंधित भी जानकारी आप दे सका। लेकिन एक नई जानकारी थाने बता रही हूँ, नई तो कोनी लेकिन थानो ध्यान भी खाने खींच रही हूँ कि थाने ध्यान है आज विशेष कई दिन है।
1: देखो राकेश भाई थे जो की जानकारी रखो नी वो हमेशा ही नुई होया करे और हमेशा ही थे जो की इसी जानकारी ले रहा हो कि सगले किसान भाई बनांगे ध्यान में तो है पर याद
0: कई याद नहीं हूँ ध्यान खातर को जानकारी हो सके थाने हो एक ध्यान थार बता रही हूँ कि आज सु नो तपारी शुरुआत होगी है
1: या तो देखो आपने

0: किसान भाई बहन खतरे अच्छी बात है कि भी नोतपा कह नहीं राकेश भाई जितनो नोतपा रो प्रकोप अच्छो सी प्रभाव अच्छो सी उतनो ही अपने खेती बाड़ी में अगर वो कैसका की फसला रो उत्पादन अच्छो सी
1: वो तो सोच रही होगा थे कैसे होगा तो चिंता री बात है और थे फुटरी बात करी कि नौ तप्पा दी जी की शुरुआत है इनमें कहीं एक सूरज की सीधी किरणा धरती ने तप्पा है और आपने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग में यानी नौ दिन तक और जिको तापमान है 4500 ले 48-50 तक वो तापमान पहुंची और जिके में

0: की किरणा धरती ने तपावे और आपने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग में यानी 9 दिन तक और जिको तापमान है 45 से लेर 48-50 तक वो तापमान पहुंची और जिके में झुलसाने वाली लू है, तेज गर्म हवा है या आप कह सकें भीषण गर्मी में खेतीबाड़ी पशुधन और अपनी खुदरी सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है और आज एक चुनौती भी है।
1: देखो राकेश भाई, चुनौती तो आपनो जो को देश है नी वो अलग अलग ऋतुओं रो देश है।
0: सही बात
1: है। आपने सगले मौसम रो आप
0: आनंद लिया करा
1: तो जो हर मौसम आपरी विशेषता भी रखे तो वैसा कई सावधानियां भी रखनी
0: तो ई भगत आपने फसलारी और बागवानी बचाव करनो है। तेज दुपरे कारण मिट्टी रे माया पानी बहुत तेजी से भाप बन उड़ जाया करे और फसला ने हीट स्ट्रेस यानी फसलां भी तनाव में आ जाया करे तो इन आपा बचाना है। सिंचाई रो समय है खेता में सब्जियां में आपने पानी रे हमेशा रात रे बगत आपने सिंचाई करनी है। देर शाम ने या दिन के सुबह सूरज निकलती बगत आपा सिंचाई कर सका। दोपहर में पानी देना बेकार है क्योंकि पानी देने से दोपहर में पानी भाप बन उड़ जाया करे
1: और वह चुकी है कि आपने जो की फसल कड़ी है वेरी जड़ है वह भी सड़ जावे और आपका जो पौधा है वो भी झुलसन रो आपने संदेह रहे तो आप दोपहर में ही सिंचाई नहीं करा
0: तो पानी भाप बन नहीं उड़े इर खतर आपने कहीं करना चाहिए।
1: आपने मलिचिंग नमी बचाने खातर प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, आप साधारण भाषा में कहो राकेश भाई तो जो की अपनी फसल रो अवशेष बचेड़ो है नी वो पौधा इर्द गिर्द आपने पानी लगा ऊपर बिछा देना चाहिए बिछावन रूप में। तो वह चुकी है कि सूर्य की किरण सीधी पानी लगाई मिट्टी ऊपर कौन पड़े तो वह नमी लंबे टाइम तक बनी रहे और अपनी फसल ने अच्छा उत्पादन मिले। बैंस आगे अपन ध्यान देना चाहिए हल्की हल्की सिंचाई है वह टाइम शुरू अपन करनी चाहिए और पशुधन में आप बात करा कि भी ऊंटा दी अपने विशेष देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बार बार जो पानी है वो पिलाना चाहिए और पशु चाहे कौन सो भी है आपने पानी तो बार बार ताजा ठंडो
0: भगत तो आपने कम से कम दिन में 4-5 बार साफ ताजो और ठंडो पानी नहीं वो पशुओं ने देना बहुत जरूरी है।
1: वह सागे सागे अपन यो भी ध्यान देना चाहिए कि भाई सूखे चारे सागे सागे जो हरे चारो है वो भी आप मिलार देवा। और देखो अभी आप बात करा कि भाई ए गर्मी रे मैं हरे चारो किए मिले तो हरे चारो खतर तो आप जो कि कैसे कहा कि जो की फसला रो बीजान है वो आप हल्की सिंचाई रे मई
0: कर सका
1: और जो थोड़ा थोड़ा हरे चारो है वो आपने हर पशु
0: और पशु ने जो छपरो है नहीं वो शांत होना जरूरी है और पशु ने आप कठे भी धूप में दिन के 10 बजे बाद और शाम ने 4 बजे पहला अपने नहीं खोलना
1: है
0: ऐसा।
1: और सबसे बड़ी बात है कि भी आजकल राकेश भाई के जो पशु है नी वेन आपा मोटे तौर पे जो पशु आहार है मिनरल मिक्सचर क्या करा खनिज मिश्रण वो जरूर देवा। वह चुके है कि पशु रे हर मात्रा में पूर्ति होती रहे और वो गर्मी से भी बचे रहे।
0: लेकिन किसान भाई अपन ध्यान है अनिल भाई वो भी ध्यान है अपने की खेतरो काम अपने बहुत जरूरी है पशुओं आप काम करा तो ई लू में आपने आ देखा कि आपने शरीर ही बचाव भी आपने करनो बहुत जरूरी है।
1: सबसे पहला आप यह ध्यान रखा राकेश भाई के खाली पेट खेत में ही नहीं जावा
0: नहीं जावा
1: और जावा तो अपना जो की अपना नाश्तो है वो कर जावा और सागे जो की लस्सी है यानी छाछ है वो ले जानी
0: जी की पेट में जा ठंडक पैदा करे
1: ठंडक शीतल पेय पदार्थ रो ज्यादा
0: सूझ और लू से बचाव करे।
1: बिल्कुल
0: देखो जी आप राबड़ी है प्याज है आप बारीक काट परो आप ले सका और दिनों के 10 बजे से पहला खेतरा काम निपटा ला या बच जावे तो आप शाम ने 5 बजे बाद निपटावा दोपहर भगत आप खेत में काम करने से बचा तो ठीक
1: रहे। मोटी बात है कि राकेश भाई के खाना पीना तो ध्यान रखना चाहिए और कई मिनट के है जो चीज नहीं खावे जी प्याज है लहसुन नहीं खावे तो वह दूसरे जो पेय पदार्थ है उन्हें टाइम पे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अपन पहनाओ भी है नी हल्का कलर का कपड़ा पहनना जरूरी है सूती कपड़ा आपा पहना और सिर ने कान ने और गर्दन ने आपा जा ढक रखा और बराबर मात्रा में थोड़े थोड़े बगत में पानी पीता रहवानी तो आपा लू से भी बच सका क्योंकि लू है नहीं लू में आदमी चक्कर आ जाया करे तेज सिर दर्द होया करे उल्टी हो जाया करे तेज बुखार हो जाया करे तो ई बगत आपने शरीर में 2 बगत नहाना चाहिए और शरीर में ठंडे पानी की पट्टियां कर परो आपा लू से निजात पा सका।
1: राकेश भाई दिन में 2 बार तो नहाना चाहिए पर दोपहर में नहीं नहाना चाहिए और खास करके अपना नहा धो ताती लू में नहीं निकला और खास करके ध्यान रखा कि भाई कपड़ा तो आपा पूरी बाजू रपेरा ही पहरा मैंने सागे सको गमछो है नी वो जरूर रखा और वैसो अपना सिर है जो लपेटे रखा
0: और भगवान अरदास करा कि उतावड़ो थोड़ो धीमो कर दो मंदो कर दो अरदास भी आपा भगवान

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतु जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
4: किसान भाइयों, देखो मई महीने रो आखिरी सप्ताह चले है और इस सप्ताह अपन देखा कि अपने गर्मी रे मौसम में फसलों ने बचाने ताई और खरीफ फसल की तैयारी करने ताई आपने विशेष ध्यान देना है। और ये विशेष ध्यान में आई है कि खरीफ फसलों ताई आपने खेतरी तैयारी गहरी जुताई कर पूरा खेत तैयार करना है और खेत ने खाली छोड़ना है। फायदा वो असी इस कि तेज धूप के कारण मिट्टी में जिका भी कीड़ा रा अंडा है, प्यूपा है, फंगस है, कोई कवक है, वह नष्ट हो जैसी। और सागे मानसून की बरसात रहे पानी ने सोखने की क्षमता है बा मिट्टी में बन जैसी, तो अपने गहरी जुताई कर पूरा खेत ने खाली छोड़ना है।
5: राकेश भाई, तो कितनी चौकी जानकारी दो, फटाफट बता दो कि भाई क्या अपन गहरी जुताई करनी है, क्या फायदो लेनो है। लेकिन वह सागे अपन यो भी तो ध्यान देनो है कि भी खेत री तैयारी कर ली तो वह में जो बीजना रो जो बीज है नी वो भी उन्नत किस्म रो लेगी रहा, क्योंकि अपना जो उन्नत तकनीका है और वह में अपन जो नए नई तकनीक आ रही है वह में उन्नत किस्म भी आप अलग अलग विकसित कर रखे हैं और वह में कम समय में ज्यादा उपज देने वाली जकी फसल है, कम पानी रे में ज्यादा फसल देने वाली किस्म है, या फिर आप कह सक पछेती बिजाई रे ज्यादा फसल देने वाली किस्म है, वो आप चुनाव कर फिर भी जान
4: उन्नत और प्रमाणित बीज नहीं। आप जिकी भी फसल लगवा चाहे ग्वार है, बाजरो है, मोठ है, मूंग है, इरी आप लानी है। और सागे सागे वो ध्यान रखना है कि जिका भी बीज लवा सहकारी समिति सु या जिका विश्वसनीय केंद्र है, बीज जिका विक्रय केंद्र है, बटे सु आपने बीज लाना है।
5: और देखो भट्टे सो आप बीज बाई चांस लिए आपने नहीं मिले तो दूसरी जगह से खरीदा तो आप पक्को बिल लेनो नहीं भूलना। और पक्को बिल लेवा और मैं सु ध्यान देवा कि भाई बैंगी जो की प्रमाणिकता है, वजन है और बैंगी जो की बीजने की समय है वो सगड़ी और मेरा जो मूल्य है वो आप सगड़ो देख लेवा और मेरे अनुसार ही वो लेन देन कर मैं बीज ने खरीद
4: पर बागवानी और सब्जी रो प्रबंधन करा कि ई मौसम में आप बेल वाली जी की सब्जियां है लौकी तोरी कद्दू या भिंडी मिर्च या टमाटर लगा रखे आप तो बेहन झुलसाण वाली गर्मी से बेहन बचाणो अपन खातर सबसे बड़ी चुनौती है। दोपहर ही बगत तेज धूप में पानी देने री आप भूल बिल्कुल भी नहीं करा। सिंचाई हमेशा दिनों की सिंचाई आप थोड़ी देर पहले बात करी करनी चीज़ें अपन ने। और साथ ही साथ मल्चिंग वाष्पीकरण पानी भाप बढ़ने उड़ने ने रोकने खातर अपन मल्चिंग करनी जरूरी है। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस माथे भी विशेष ध्यान देना है। जिका भाई बंधु आधुनिक खेती करे वे इस सप्ताह पॉली हाउस रहा जिका भी वेंटिलेशन है हवारी आवाजाही है भी पर ध्यान जरूर देवे। तापमान बढ़ने से भी पॉली हाउस रे माया उमस और हीट

0: स्ट्रेस हो जाया करे, जिके सू फूल जड़ने की समस्या बन जाया करे, और फंगस ने नियमित अंतराल पर आपा हटाता रहवा तो वो भी ठीक रहे।
1: तो देखो राकेश भाई, आप बातें तो कराई हैं, मैं सागे सागे आप यह भी ध्यान देवा कि भाई अपना पशुधन है वो वेरी भी आप देखभाल अच्छे तरीके से करा, और यह भी ध्यान देवा कि भाई अपना जो को आवास है वो भी अच्छे तरीके से मनेड हो, तो आपन भी ताती लू सू बचाव मिल जाए, जहाँ छपरो है टाट है लगा रखा, और जो कि ताती लू आवा मैं दिशा में आपा जो कि टाट है वहाँ पर पानी चिड़े कर ठंडो रखा, पशुओं भी यो ध्यान रखा, और सागे सागे आप जो कि यह भी ध्यान देवा कि भाई अपने जो खेती बाड़ी रो काम है वो भी आप अच्छे तरीके से कराई करा, और बैंक सागे जो कि आप उस दी फसल रहे है उन्हारो भी उत्पादन ले वहाँ बैंक सागे आप यह भी चीज देखा कि भी नगद आमदनी है वो फसलों भी बिजान करनो नहीं भूला, वैसे आपने नगद आमदनी मिले और आप ज्यादा फायदो ले सकते,
0: और आपने वो भी नहीं भूलने हैं कि आप जानकारी देवा तो सागे सागे गीत भी बराबर सुनाता रहे, तो भाई ने सुनावा एक और फूटरो सो गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: राकेश भाई देखो अब आप संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो लोकगीत सुनो और जकी बाता अपन जदी अच्छी लागे जकी आपा समाज रो संतुलन मनेडो है अच्छी अच्छी योजना है अच्छो अच्छो खान पीन ने मिले अच्छा अच्छो खान पीन रे सके सुनन ने भी मिले जद आपने अच्छो लागे।
3: सही बात है।
2: और मैं खातर देखो आपने जका बात कही अपने माता बुजुर्ग कभी जो समाज है नी सही दिशा में जदि आगे बढ़े जद लड़का ने लड़की ने आगे बढ़ने रो बराबर हक मिले।
3: बराबर हक मिला सौखी बात कर रहा हो। और बराबर हक रो मतलब वो है कि दोनों ने बराबर पढ़ने रो मौको मिले और पढ़ी जन भाई अपना आप रे दिमाग हूँ आगे बढ़ी।
2: तो देखो
3: लेकिन आप देखा कि अब बार इस साल में आप देखियो कि आपने देश में बेटियां जिकी है बालिकाएं जिकी है वे पढ़ लिख पर और बहुत आगे आ रही है हर क्षेत्र में आगे आ रही है चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। पहला आपने यहाँ लाग तो कि भी बेटियां ने अवसर बराबर नहीं मिल रही है लेकिन अब तो सरकार जिकी है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो वे बराबर बेटियां खातर अच्छी योजनावां ला रही है। आज आप भी योजना पर चर्चा करा कि बेटियां रे उज्ज्वल भविष्य बयान शिक्षा सुरक्षा और बयान आर्थिक स्वावलंबन ने सुनिश्चित करने खातर कई दूरगामी योजनाएं जी की है वह सरकार तरफ चल रही है और ई योजना और मुख्य उद्देश्य वही है कि समाज में बालिकाओं रे प्रति जी को सकारात्मक दृष्टिकोण है बिन्हें विकसित करना है और बयान आत्मनिर्भर बनाना है।
2: तो देखो सबसे पहला जो कि मैं बात करा मैं मान तो एक ही बात चौकी लगी कभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो कि बेटी बचावा तो आपने समाज रो संतुलन बने रहे और बेटी पढ़ावा तो आपनो समाज आगे बढ़े। तो आप दोनों बात है जो कि ए योजना रे मैं समाहित की गई।
3: देखो बेटी और पढ़ लेनी तो दो घर ने तार दिया करे
2: तो यही सारो जो कि यह योजना नहीं है माने सबसे अच्छी लागे सरकार री और इन्हें कागज री सागे सागे धरातल पर भी उतारण खातर अपन सगले मिनका ने प्रयास करना
3: पड़े। उद्देश्य हो कि देश में जिको भी बाल लिंगानुपात है नहीं कि भी इतनी लड़कियां इतना लड़का जिको अनुपात है वो अनुपात भी में सुधार हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या ने रोकने खातर भी प्रयास हो रही है और बालिकाओं री जिकी स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने रो भी उद्देश्य ई योजना में निहित है।
2: और देखो जकी दूसरी है नी सुकन्या समृद्धि योजना वो माने बहुत ही अच्छी लगे। फिर मेरे बाद में वह में किया कि आप जकी बिटिया हुआ है तो वह में किया कि जय घर में बिटिया जन्म लेवे नी तो वही टाइम यह हो जाए कभी बैंकि शादी में खर्चो लाग सी बैंकि पढ़ाई लिखाई में खर्चो लाग सी और आपने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव में आ जाए परिवार पर वह दूर करने खातर यह जकी सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई है और ऐसे तहत किया कि समाज में जकी बचत करने रो एक अच्छो तरीको अपनाए गए और यो लोकप्रिय भी हुए वह सुख है कि अपनी सुरक्षित आर्थिक बचत भी हो और अपनी जकी बच्ची ने आना टाइम जीवन भी खुशहाल।
3: एक परिवार में अधिकतम दो बेटियां खातर वो खातो खोलियो जा सके। अपन यदि खाते में कितो निवेश और कितो ब्याज मिल सी इस बारे में बात करा तो अपन वो ध्यान है कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम आपा 250 रुपया और अधिकतम आपा करीब 1.5 लाख रुपया आपा ई खाते में जमा करा सका और ई योजना माथे सरकार द्वारा बहुत ही आकर्षक और उच्च ब्याज दर आपने मिले जिकी पूरी तरह से टैक्स फ्री और टैक्स मुक्त होया करे। परिपक्वता की बात करा और पैसों कद परिपक्व हो तो बेटी री आयु जद 18 वर्ष या उच्च शिक्षा खातर आपा 18 वर्ष होने पर या उच्च शिक्षा खातर आपा 50% तक राशि आपा निकाल सका और 21 साल पूरे होने पर आपा खाते ने पूरी तरह से परिपक्व मानी जाए और बीरबाद पूरा पैसा आपा निकाल सका।
2: तो देखो कितनी चौकी जानकारी है ते दी हो ए योजना सरो के भी आपा सगला मिनक ए योजना से जुड़ा और फायदो भी लेवा तो और मैंने सगे भी जो कि और भी योजना

0: राकेश भाई, ए बार आप गीत लो सुनियो मीठो सो, और वैसो अपनी जकी चौपाल है वैम भी जो उत्साह आ जाए, और जकी थकान है किसान भाई बनाएंगी वह भी दूर आ जाए। और मैं सरू देखो आप बाता भी करा कि भाई सबसे पहली बात है कि भाई स्वस्थ जीवन होना बहुत ही जरूरी है, और स्वस्थ जीवन जदि हो जब आप की करता रहा आगे सू आगे, और आगे आगे करता रहने को मतलब ये है कि भाई काम धंधो करा तो अपना शरीर स्वस्थ रहे। वही सरू के आप रक्तदान करता रहा नहीं तो अपने शरीर में नयो खून मणतो रहे और आप स्वस्थ भी रहे।
1: रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: सागे सागे कभी आप यह चीज सोचा कि दूसरे मिनख ना आप दान करने लग रहे हैं, मैं पहला खुद जीवन दान।
1: अनिल भाई
0: नयो खून मन लागे
1: मारो कहना मतलब भाया ना वही है कि दुनिया में कोई भी कारखानो या प्रयोगशाला को नहीं जट ओ जिको शरीर में खून बहवे नहीं
0: यो बन जावे,
1: ओ बन जावे कटी को नहीं। और यही ऑक्सीजन बनाने खातर पेड़ पौधा है, दुनिया में कोई कारखानों को नहीं, कोई भी उद्योगपति बता दो या कोई सरकार बता दो जिका ऑक्सीजन बनाने का कारखाना बनाया हो या खून बनाने का कारखाना बनाया हो कठी को नहीं।
0: देखो आपने तो खून समझनी है,
1: खून अपने शरीर में बने और इरो अपने समय समय पर दान करनो चीजें जिके सो अपन शरीर भी निरोग रहे,
0: अपनो शरीर भी निरोग रहे और जिन्हें जरूरत है वो भी निरोग हो जाए और स्वस्थ हो जाए।
1: और 18 साल

0: से ऊपर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति वो रक्तदान कर सके।
1: तो देखो
0: और तीन महीना में एक बार आपा रक्तदान कर सका,
1: ये बात ने समझा। और रक्तदान करने टाइम आपा भी आपने खून री जांच करानी नहीं भूलना,
0: बिल्कुल।
1: और जो की आपने खून रे मई कोई जो की बीमारी है तो आपा रक्तदान करने से बचा, मेरी जांच करवा रही, आपा खून दान
0: कर सका,
1: रक्तदान करा। तो देखो वह सर अपना बाता करता रहा, चौपाल रे मई गीतरला भी जरूरी है।
0: अब तो गीतरलो सुनाओ,
1: गाजो गाजो जेठ पद्मा व्यास री आवाज रे मई मीठो सो गीतरलो सुना सा।

0: राकेश भाई देखो अब आर आप मीठो सो लोक गीत सुनियो पद्मा व्यास रिया वाच रमाई और बाता तो आप चौपाल रमाई और भी करा
1: बाता खुटे ही कोनी
0: अपनी जी खास तौर सु ध्यान यही रखना है कि भाई लूरे टाइम रे मई अपना अपनो बचाव रखा अपने टबरिया रो बचाव रखा मायता रो बचाव रखा और पशुपालन में ध्यान देवा कभी लू सुम अपना पशुपालन बचे रहे
1: बिल्कुल
0: और अब आर ध्यान देवा गड़ी री सुई कानी
1: देखो सुई इशारो करे कि कार्यक्रम रो भगत पूरो रही है सीख देव आप साथी राकेश कुमार जोशी
0: और अनिल सिंह खिचड़ ने घना घना
1: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे राकेश कुमार जोशी और अनिल सिंह खीचड़। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस वक्त ठीक 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठा

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम और चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद

0: में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें करियर

0: afcat@workforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश

0: और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
2: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala, Film, Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
1: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
3: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Ram Bhil, Ratilal Mohanlal Borisagar, Swami Brahmadev and Kumar Bose. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic

फिल्म संगीत की इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज तीसरी मंजिल फिल्म के लिए। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म का नगमा, आवाज है किशोर कुमार की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से गीत।

पुराने फिल्मों से गीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज आशा फिल्म के लिए।

इसके साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। तो पहले सुनिए सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान है।
1: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
2: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइगर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता है कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
2: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
2: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर,
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट

0: की बहुत जरूरत होती है।
1: जी जी जी।
0: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
1: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े। पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कुछ कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे, वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। सर,
0: पहली बार सॉफ्टबॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला, और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्टबॉल के सफल प्रशिक्षक हैं? इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
1: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं, हमारी टीम ने पार्टिसिपेंट किया था।

0: इधर जा रही है और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो दौड़ी कुछ भी हुई तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया
1: जी।
0: जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे तो मेरा मेरे बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था शॉर्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही। फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी। तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला जब हमारा केरला से मैच था, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम
1: जी।
0: उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित हुआ था तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी है सर। फिर सर जैसे बढ़ता जाता तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी जी जी देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले। आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्ट बॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
0: सर सॉफ्ट बॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
1: जी जी जी
0: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है मर्दों गेम है, पहले एक्चुअली में क्या है बेस सॉफ्ट बॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया। तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया, उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
1: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
0: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है, एक्चुअली में क्या है ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर 9 खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर। तो मजे आए कॉमन गेम, तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
1: जी, जी,
0: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
1: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
0: सर एक्चुअली में सॉफ्ट बॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई तो उसमें हम नहीं जा पाए।
1: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
0: सर अभी जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
1: जी जी जी,
0: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है
1: जी जी,
0: तो उनके लिए पास चैंपियन अथॉरिटी के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था शॉर्ट बॉल
1: जी।
0: तो उसमें पीस पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को उन भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर को वहां पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
1: जी जी जी,
0: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं यार पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में है बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सर मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
1: और इस समय जूनियर सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्ट बॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
0: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अभी 2025-26 के मैचमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
1: जी जी
0: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर, और छोटे बच्चे भी हमारे एक मयंक नागर है लड़का तो वो नेशनल खेल के आया है झालावाड़ में, पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है अभी जैसे गर्मियां बड़ी छुट्टियां लगी तो बच्चे आ रहे हैं।
1: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्ट बॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
0: भारतीय सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है
1: जी जी,
0: और इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल, और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं।

0: हर आदमी
1: जी
0: तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट्स नेशनल लीग है जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
1: झालावाड़ के लिए वास्तव में यह गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्ट बॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
0: जी
1: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
0: सर, किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने उसके प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब ऑफ द स्कूल तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग, फिर एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, फिर नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसको डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के, वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें
1: जी
0: भी।
1: जी जी और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग हिटिंग फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग हिटिंग फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
0: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स,
1: जी जी
0: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत ही हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनाइस करने गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको
1: जी जी
0: हम
1: जी
0: बच्चों पे अभी धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है वो उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और
1: जी जी
0: सबसे
1: जी
0: इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा।
1: जी
0: तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
1: जी जी जी सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो
0: जी
1: कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
0: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं तो क्या, अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े
1: जी
0: खड़े
1: हाँ जी
0: पिचिंग
1: हाँ
0: करना होता था।
1: जी
0: तो अभी इंडिया में जैसे नई आई जंप करके, जैसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्ले प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते हैं, पीछे रखे तो जंप करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। जैसे उनको बताते हैं, जैसे
1: जी
0: बेसिक्स
1: जी जी
0: हमें सिखाया गया है कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पहनते हैं उसके पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती है, ग्रिप्स वगैरह जो उसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रिप्स
1: जी जी
0: पकड़ के।
1: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं। ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीज़ें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ हमने तुम्हें कम सिखाया है, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप को
1: जी
0: सबको
1: जी
0: पता है
1: जी
0: कैसा क्या होता है।
1: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं?
0: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से होटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं सो इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन आउटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवनेशन आता है। और गेम
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: गेम
1: जी
0: है ये, तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि अभी बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो 9 प्लेयर 9 प्लेयर्स इन होते हैं, तो कभी भी किसी के पास बोलते हो एक्टिवनेशन होती है। और दूसरा हम फोकस के लिए बहुत सारे ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100-150 बॉल से कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
1: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है,
0: जी
1: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपके रहे?
0: सर, मेरे करियर के में सर सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा अभी जीतने के बाद। बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4-5 से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम,
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: खेलने इतना टाइम तक लंबा मैच चला फिर हम हारे, तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या

0: में कमियां रह गई तो उस पर मेहनत करी, तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन रहा। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था कि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग,
1: जी जी
0: झालावाड़
1: जी
0: और भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
1: जी जी जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, तो क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमज़ोर सा रहता है?
0: मेरे मेजर जनरल जानकारी से हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है, पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में, पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: लंबी प्रोसेस से आते हैं, अच्छी इक्विपमेंट्स। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं पाए, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
1: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं,
0: जी
1: और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहाँ पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: सर, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य, किस किस हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा ही नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे
1: जी
0: थ्रो
1: जी
0: करना है।
1: जी जी
0: थोड़ा
1: जी
0: नियम थोड़ा सा अलग हटके हैं, थोड़ा रूल्स तो वो भी हैं, और ठीक है अपना गेम है। और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन, जो नो प्लेयर खेलते हैं हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से
1: जी
0: बॉल
1: जी
0: पहुंच
1: जी
0: पा रही है।
1: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहाँ तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
0: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूँ तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा आने वाला। मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूँ कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे। साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूँ मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा शंकर सर जो खेल अधिकारी, उनका मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे
1: जी
0: पे,
1: जी जी
0: साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग मेरे से ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ तो ये लोग चाहते हैं। तो साथ साथ ये भी आज जिस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूँ, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
1: विशाल, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान था। लीजिए अब सुनिए गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन से करवा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में।
4: शिक्षा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: शिक्षा, आप अपने बारे में बताइए।
5: मैं जयपुर से हूँ और मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल गोल्फर हूँ, और मेरी मम्मी का नाम मेघा जैन है और मेरे पापा का नाम सनी जैन है।
4: आप गोल्फ खेलती हैं, आपके टी शर्ट के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग है वो भी मुझे नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे बच्चे जब आगे आकर खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और प्रेरणा मिलती है। शिक्षा, आप बताइए कि गोल्फ की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई?
5: जब मैं अराउंड 8 ईयर्स की थी तो मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमें बोला था कि हमें एक बार गोल्फ ट्राई करना चाहिए। उससे पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्फ ट्राई किया मुझे धीरे धीरे गोल्फ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इन 1 ईयर मैचेस खेलने स्टार्ट किए और मैं मैचेस जीतने लगी, और मुझे गोल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, इसलिए तब से मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है।
4: बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने मेडल्स भी जीते हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक?
5: अभी तक मैंने अप्रॉक्स 100 अराउंड मेडल्स ट्रॉफीज जीती है
4: ओके और आपकी रैंकिंग क्या है श्रोताओं को बताएं
5: मेरी रैंकिंग इंडिया में अपनी एज कैटेगरी में सेकंड है और ओवरऑल इंडिया में नेशनल्स में मेरी रैंकिंग इन एवरी कैटेगरी लाइक सीनियर्स में मेरी 10th है और वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अभी 1600 है
4: वेरी नाइस आपने बहुत ही छोटी उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको हम अगर थोड़ा बताना चाहें कि गोल्फ कैसे खेलते हैं

0: गोल्फ में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है गोल्फ के बारे में वो है कि गोल्फ में 14 तरह के क्लब्स होते हैं, 14 तरह के क्लब्स होते हैं और हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है।
0: क्लब का मतलब हम बैट से समझ सकते हैं?
1: हाँ, काइंड ऑफ।
0: जिस तरह से बैट से बॉल को हिट किया जाता है,
1: हाँ,
0: उसी तरह से जो गोल्फ का जो बल्ला होता है उसको क्लब कहते हैं।
1: हाँ, वो काफी डिफरेंट होता है। सो हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है। लाइक बंकर्स भी होते हैं, मिट्टी होती है, अगर आपको उसमें से मारना है तो आपका क्लब डिफरेंट होएगा। अगर ग्रीन होती है, अगर आपको ग्रीन के पास में से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होएगा। अगर आपको ग्रीन के ऊपर से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होता है, जैसे उसको पटर बोलते हैं, ग्रीन के पास वाले को सैंडविच बोलते हैं। अगर बंकर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कुछ ग्रीन के पास होते हैं जिनके लिए लॉब वेज यूज होता है, कुछ ग्रीन से काफी दूर होते हैं उनका डिफरेंट टाइप होता है, और जैसे कुछ नॉर्मली फेयरवेज होते हैं और ग्रीन में डिस्टेंस होता है तो उनके अलग होते हैं। अगर आप रफ में से मार रहे हो तो उनके अलग होते हैं। आपको लो शॉट मारना है उसके लिए अलग है, आपको हाई शॉट मारना है उसके लिए अलग।
0: तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होती है। इसके साथ जब हम गोल्फ खेलते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
1: बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे पहले मैंने बोला डिफरेंट क्लब्स होते हैं, तो जैसे मान लो आपके ग्रीन और आपके शॉट में अराउंड 130 यार्ड्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो अब आपको उसके लिए पहले हवा चेक करनी पड़ेगी कि हवा हेड है टेल है। हेड मतलब कि अगर हवा पीछे की साइड आ रही है, टेल मतलब अगर हवा आगे लेके जा रही है। तो हवा का भी एक रोल होता है, अगर वो लेफ्ट टू राइट है या फिर वो राइट टू लेफ्ट है, तो उन सब का ध्यान देना पड़ता है। और फिर दूसरा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, लाइक आपके खुद के एडेजेस होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना आइडिया तो रहता है कि आपका हाँ इतना क्लब इतना जाता है। ये चैलेंजेस, फिर पटिंग, चिपिंग, बंकर जैसे मैंने बताया, मिट्टी से, सैंड से, नियर ग्रीन या फिर ग्रीन पे, और फिर अराउंड ये मैच 6 आवर्स चलते हैं, एक मैच 18 होल्स का। तो वही होता है आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
0: अच्छा, जैसे धूप में खेलना होता है तो उसमें आप किस तरह से मैनेज करते हैं?
1: तो लाइक
0: 6 आवर्स तो काफी लंबा टाइम हो गया।
1: हाँ, जैसे बहुत ज्यादा समर्स होते हैं, लाइक अराउंड 35-40 degrees हम यूजुअली खेलते हैं, तो वो अराउंड पीक टाइम होता है हमारा, जनरली 11 to 4 o'clock होता है। सो लाइक फुल पीक टाइम, तो उसमें हम लाइक वी हैव अम्ब्रेलाज होते हैं, तो हमारी जो ट्रॉलीज होती है उन पे अम्ब्रेला का स्टैंड बना हुआ होता है, या फिर हम जब वॉक करते हैं शॉर्ट्स के बीच में हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। और फिर हम बहुत सारी चीजें जैसे वाटर, इलेक्ट्रोल्स, हमें वो सब कैरी करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है, और हमें बीच में लाइक रेस्ट होता है। आपको जो भी कंज्यूम करना है तो वो आपको चलते चलते ही कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोल हो गए, और बीच में जो होल्स होते हैं तो फिर मम्मा या कोई भी बीच में लाइक नींबू पानी या फिर कोई तरह का जूस दे देते हैं।
0: तो मम्मा आपको सपोर्ट करती है गेम में?
1: हाँ, काफी।
0: अच्छा,
1: मम्मा पापा दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल है।
0: अच्छा, जैसा आपने बताया कि फिटनेस बहुत जरूरी है, तो फिटनेस के लिए आप क्या स्पेशल करती हैं, क्या ध्यान रखती हैं?
1: फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्फ में। तो मेरे कोच है सागर सर, वो चंडीगढ़ से है, तो मैं चंडीगढ़ जाती हूँ कोचिंग लेने उनसे। वो लाइक क्रिकेटर्स जैसे युवराज, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उन सबको भी वही ट्रेन करते हैं फिटनेस में, एंड वो मुझे कार्ड दे देते हैं, फिर मैं जयपुर आके उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ।
0: जैसे बहुत से बच्चे भी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कौन से रूटीन को आप फिटनेस के लिए फॉलो करती हैं जिससे वो भी सीख सकें या कोई प्रेरणा ले सकें?
1: मैं गोल्फ स्पेसिफिक रूटीन भी करती हूँ और नॉर्मल वर्कआउट रूटीन भी होता है मेरा, मोस्टली गोल्फ स्पेसिफिक होता है, लाइक कोर, शोल्डर्स, लेग्स, बैक, क्योंकि गोल्फ में सबसे ज्यादा रोल कोर, बैक, शोल्डर्स, लेग्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गोल्फ स्पेसिफिक भी करूँ और हर बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ।
0: इसमें आप इतना समय देती हैं तो साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं?
1: मैं जनरली जयपुर में मैं उतना नहीं रहती हूँ बिकॉज मेरे नेशनल्स चलते हैं, तो मैं अराउंड 10 days ही रहती हूँ जयपुर में इन अ मंथ, बट जब भी होता है तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ। सो हाँ,
0: तो आपको तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है।
1: हाँ, पढ़ाई में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, मैं काफी मेरा सिलेबस छूट जाता है, पर जैसे अभी एग्जाम्स है तो 1 month काफी सारी पढ़ाई एक साथ करनी पड़ी थी।
0: स्पोर्ट्स से हमें वो कंसंट्रेशन की पावर मिलती है जिससे हम डिसिप्लिन सिखाता है स्पोर्ट्स हमें, तो हम कम समय में भी क्यूरिकुलम को कवर कर सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी स्पोर्ट्स में होना बहुत जरूरी है। सो वो सब स्पोर्ट्स

0: को बहुत ज़्यादा सिखाता है।
1: गोल्फ की बात करें, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप फॉलो करती हैं या जिनसे आप प्रेरित होती हैं?
0: सबसे ज़्यादा मैं टाइगर वुड्स, रॉरी मैकलरॉय और स्कॉटी शेफलर।
1: ओके।
0: सो स्कॉटी शेफलर अभी वर्ल्ड नंबर वन है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जिस तरह रॉरी मैकलरॉय, उनका जो बॉल स्ट्राइकिंग का जो वे है, उनका जो फोकस है, कि जिस तरह वो मैचेस खेलते हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। इंडिया के प्लेयर्स शुभांकर शर्मा एंड अदिति अशोक दी, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और अनिर्बान लहरी सर, तीनों मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं।
1: कौन कौन से कंट्रीज में आपने खेला और इंडिया को रिप्रेजेंट किया?
0: मैंने इंडिया को थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। और मैंने थाईलैंड में अब 3 to 4 टूर्नामेंट्स खेले हैं। थाईलैंड में लाइक डिफरेंट सिटीज, जैसे चियांग मई, बैंकॉक और हुआही, इन तरह की कंट्रीज सिटीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है।
1: ओके। इसके अलावा भी कोई आपकी हॉबीज हैं?
0: जनरली तो उतना नहीं टाइम मिल पाता हॉबीज को, बट मेरी हॉबीज है डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लॉन्ग टेनिस।
1: करियर अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह से देखती हैं और अपने आप को आप कहाँ देखती हैं आज के टाइम में?
0: मेरे को इंडिया के लिए गोल्फ में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है, और मैं वही अपने आप को स्टैंड करती हूँ, और मैं वही चाहती हूँ।
1: जब लक्ष्य का हमें पता होता है और बहुत ही छोटी उम्र में हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होता है। चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज के तौर पे कहना चाहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगी कि आपका जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का बैडमिंटन में, किसी का गोल्फ में, किसी का लॉन्ग टेनिस में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपको वही स्पोर्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिना मन से करोगे तो वो चीज नहीं हो सकती। गोल्फ मेरे लिए सब कुछ हो चुका है, तो हाँ।
1: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ यही हैं कि आप गोल्फ में आगे से आगे बढ़ते जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र जयपुर का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण।
1: खेल जगत, जी हाँ, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत कुछ चुनिंदा गजलें।

0: साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के

0: लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।